अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतये।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आदर आभार अभिनंदन आदाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आज रविवार है, 19 जुलाई 2026, पंचांग 1948 के अषाढ़ महीने की 28वीं तिथि। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण लेकर हम उपस्थित हैं। उद्घोषक इकबाल कादिर का हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 17वां दिन है। हम सभी यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा की मनोकामना करते हैं और आज के इस प्रसारण का आरंभ करते हैं।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DGH की अमरनाथ सर्विस, न्यूज़ ऑन EIR की जो मोबाइल ऐप है उस पर आप हमें सुन रहे हैं DTH पर और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। श्रोताओं, आपको एक अहम और ज़रूरी जानकारी देना चाहेंगे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है आज 19 जुलाई 2026 से फ़िलहाल आर्जी तौर पे मुअत्तल रहेगी। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से एक सूचना दी गई है मौसम के हवाले से कि जो मौसम है, चाहे हम जम्मू की बात करें या श्रीनगर की बात करें या यात्रा पर जाने वाले जो दो मार्ग हैं, बालतल मार्ग और पहलगाम मार्ग, उन दोनों मार्गों पर मौसम ख़राब रहने की आशंका जताई गई है, जिसकी वजह से यात्रा जो है फ़िलहाल के लिए मुअत्तल की गई है। और इस हवाले से जो भी एहतियाती इकदाम उठाए गए हैं उन पर यात्रियों को अमल करने की जो है गुजारिश की जाती है, अनुरोध किया जाता है उनसे, ताकि उनकी जो है वो हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और अगले चंद दिनों में क्या होता है या आज के दिन के बाद क्या होता है, उस हवाले से हम आपको अवगत कराते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल हमारा ये जो प्रसारण है, इसका जो हम आरंभ करते हैं वो अपने जो हमारे घाटी के विभिन्न भागों से हमारे संवाददाता हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ प्रशासन के द्वारा कदम उठाए गए हैं जो फ़िलहाल यात्रा आज के लिए मुलतवी कर दी गई है, इसकी जो है क्या वजह है। और वजह तो वैसे हमने आपको बता दी कि मौसम की जो ख़राबी है, और जो यात्री फ़िलहाल मुख्तलिफ आधार शिविरों में रुके हुए हैं उनके लिए क्या कुछ जानकारियां हैं, क्या कुछ उनके लिए कहा गया है कि उनको क्या करना है, उनके लिए क्या कुछ प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की हैं और उन पर वो कैसे अमल करेंगे, इस हवाले से हम सबसे पहले रुख करते हैं अपने जो जम्मू के हमारे संवाददाता है जावेद मेहराब, उनकी तरफ हम उनको हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रशासन के द्वारा ये कदम उठाया गया है ये क्यों उठाया गया है और क्या कुछ कहा गया है प्रशासन के द्वारा और क्या कुछ यात्रियों को सलाह दी गई है, मशवरा दिया गया है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब। जावेद, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बार फिर मौका हमें दिया अपनी जानकारी जो जम्मू के पहले निवास स्थान भगवती नगर की है जी, उस पर अपडेट देने का। जी,
0: जो कल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पेशन गोई जताई गई है कि मौसम जो है वो ख़राब रहने वाला है और आज 19 जुलाई के लिए फ़िलहाल यात्रा को जो है मुलतवी कर दिया गया है, इसके हवाले से आपके पास क्या जानकारी है और क्या क्या जो है सुविधाएं बरतने का ये दिया गया है यात्रियों को, क्या क्या मशवरे दिए गए हैं और आपके पास इसके हवाले से क्या कुछ जानकारी है?
1: जी, एन मुताबिक मौसम की बात करें तो जो IMD ने बात कही है मौसम के, बिल्कुल, क्योंकि काफी देर से जो मौसम था वो लगातार गर्म और उमस भरा चल रहा था जम्मू में भी, और उसी के चलते आज जम्मू शहर में इस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए हैं और सुबह के समय भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि अभी बारिश हुई नहीं है लेकिन संभावना जो है वो बनी हुई है। लगातार पिछले लगभग दो हफ्तों से मौसम खुश्क रहा, आसमान पर जो है वो गर्मी और उमस छाई रही, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को भी तकलीफ थी। लेकिन अब इस दौरान जम्मू में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि भारी बारिश हो सकती है, और उसी के चलते प्रशासन के मुताबिक आज श्री अमरनाथ जी यात्रा को भगवती नगर के पहले निवास स्थान से घाटी की ओर जाने की इजाजत नहीं मिली। दोनों मार्गों की तरफ यात्रा को फिलहाल मौसम के बदलते रुख के कारण रोक दिया गया है और ये फैसला जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने साझा करते हुए बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो अपने अपने ट्रांजिट कैंप्स में बने रहे, अगले फैसले तक सब्र के साथ इंतजार करें, क्योंकि ये फैसला जम्मू कश्मीर में मौसम के बदलते रुख और खासतौर पर जम्मू संभाग और नेशनल हाईवे 44 के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर उठाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को जम्मू और कश्मीर के सफर के दौरान तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसी तरह कश्मीर में भी अलर्ट है, लेकिन ज्यादातर जो ये अलर्ट है जम्मू संभाग में है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मॉनसून का चलन है, जिसकी वजह से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ये लगभग 3 दिन तक रहेगी, 21, 22, 23 तक ये चेतावनी दी गई है इसी के चलते। और इस दौरान तीर्थयात्रियों को खास तौर पर, क्योंकि अभी तीर्थ यात्रा को पहले ही रोक दिया गया है, हालांकि कई बार क्या होता था कि मौसम की भविष्यवाणी के बावजूद भी कई बार जो यात्रा है वो निकल जाती थी, लेकिन इस वर्ष जो है ये मौसम को लेकर कड़ी चेतावनी पर अमल करने की बात कही गई है। कई बार जो उपराज्यपाल है जिन्होंने विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स का दौरा किया, जहां भगवती नगर का दौरा किया, वहीं कश्मीर के नुनवन बेस कैंप और कई और बेस कैंप्स का भी दौरा करते हुए उन्होंने खासतौर पर प्रशासन के अधिकारियों को ये जताया कि मौसम की एडवाइजरी पर खास तौर पर अमल किया जाए, क्योंकि कई बार कुदरती आफात इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में मौसम के चलते हो जाती है और कई बार जम्मू कश्मीर में ऐसा देखा गया है। इसीलिए खास तौर पर उनकी जब भी उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई, जब भी बैठक हुई, उस बैठक में खास तौर पर ये कहा गया कि जब भी मौसम की जो भी भविष्यवाणी हो उस भविष्यवाणी पर पूरी तरह से सख्ती के साथ अमल किया जाए, चाहे कोई भी हालात हो, किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनकी सुरक्षा को लेकर ना लिया जाए, ताकि श्रद्धालु जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित भी रहे और सफर भी उनके लिए आसान रहे। इसीलिए क्योंकि ये पहाड़ी श्रृंखला का सफर भी जम्मू का है, यहाँ पहाड़ों से होकर ही वो घाटी पहुंचते हैं, इसलिए ये खास तौर पर दिशा निर्देश है कि जब भी मौसम विभाग की तरफ से किसी भी तरह की चेतावनी दी जाए तो उसमें सख्ती के साथ अमल किया जाए। उसी को लेकर ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल जम्मू के भगवती नगर और उसके अलावा तवी रिवर फ्रंट और दूसरे जो बड़े ट्रांजिट कैंप्स है उनमें ही श्रद्धालुओं को रोका गया है और उन्हें खास तौर पर, हालांकि इन ट्रांजिट कैंप्स में तमाम तरह की सुविधाएं रखी गई है पहले से ही। हम पिछले लगभग 17 दिनों से ये अपडेट बराबर दे रहे हैं कि बिजली, पानी, खाने पीने की, भोजन की, हर तरह की सुविधाएं इन ट्रांजिट कैंप्स में मौजूद है और जम्मू शहर में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। यहाँ के मंदिरों में, यहाँ के निवास स्थानों में, यहाँ की सभाओं में, हर तरफ जो है तीर्थयात्री बहुत अच्छी तरह से यहाँ उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है, इसलिए उन्हें खास तौर पर सिर्फ मौसम के चलते सबर के साथ इंतजार करने को कहा गया है, ताकि जैसे ही प्रशासन दूसरा फैसला ले, जब वो मौसम क्लियर हो जाए, जब तक मौसम की जो भविष्यवाणी है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि भारी बारिश, जब भारी बारिश हो तो उसमें रिस्क लेने का किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जाता, इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल जो यात्रा को है वो रोक दिया गया है और खासतौर पर श्रद्धालुओं को अपने अपने ट्रांजिट कैंप्स में ही रहने को कहा गया है, ताकि बारिश के दौरान, भारी बारिश के दौरान उन्हें निचले इलाकों की तरफ जाने को मना कर दिया गया है। खासतौर पर उनकी जो स्वास्थ्य है उसको लेकर भी उन्हें एडवाइजरी दी गई है कि किस तरह से बारिश के मौसम में वो अपना ख्याल रखें, ताकि सब्र के साथ वो इंतजार भी करें, ताकि जैसे ही नया फैसला लिया जाएगा मौसम के बाद, मौसम इस बदलते मौसम के बाद तो उन्हें फिर से इजाजत दी जाएगी इस घाटी में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। तो फिलहाल यहाँ जम्मू में तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया है।
0: जी
1: जी
0: जी हम भी यही मनोकामना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि जो मौसम का जो हाल अभी है इसमें बदलाव आए और जो यात्री बहुत ही अपने सपने लेकर, अपने अपेक्षाएं आशाएं लेकर यात्रा करने के लिए आए हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आए, उनको बाबा बर्फानी के दर्शन जल्द से जल्द हों और हमारी यही मनोकामना रहेगी। फ़िलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुफस्सल और ताज़ा जानकारी के लिए।
1: बहुत शुक्रिया।
0: ये थे हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब, जो बता रहे थे कि जम्मू का जो डिवीज़न है, जम्मू क्षेत्र जो है उसमें ऑरेंज अलर्ट, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या हमारा जो लोकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है जम्मू में, जिसके मुताबिक जो है भारी बारिशें होने का अंदेशा जताया गया है, जिसकी वजह से जो यात्रा है फ़िलहाल रोक दी गई है आर्जी तौर पर, और जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा यात्रा को फिर से चालू किया जाएगा। फिलहाल ये जो कदम है ये इसलिए उठाया गया है ताकि हमारे जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, उनको किसी किस्म का कोई कष्ट ना हो, उन्हें किसी किस्म की कोई दुविधा का सामना ना करना पड़े, और हमारा भी यही फ़र्ज़ है कि हमारे जो यात्री हैं, मेहमान हैं, जो देश के विभिन्न भागों से आते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं यहाँ यात्रा करने के लिए, उनकी सुरक्षा और उनकी आरामदेह यात्रा के लिए हम पूरा काम करें और उनको किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका ना दें। इसी वजह से फ़िलहाल जो यात्रा है आज आज दिन के लिए फ़िलहाल मुलतवी कर दी गई है 19 तारीख से, और जैसे ही मौसम में तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, इस यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा और फिर से जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं वो पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन कर पाएंगे। फ़िलहाल के लिए हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, हम अपने विभिन्न जो घाटी के विभिन्न भागों में हमारे संवाददाता हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और कोशिश हमारी यही है कि आप तक ताज़ा तरीन जानकारी पहुँचे, और जो यात्रा आज मुलतवी कर दी गई है मौसम की ख़राबी की वजह से, उसके हवाले से क्या कुछ आगे आएगा आपको उससे अवगत कराते रहेंगे। फ़िलहाल ये विशेष प्रसारण जारी है।

0: हजार 26 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप इन विभिन्न चैनलों पर विभिन्न माध्यमों से हमें सुन सकते हैं ताकि आप तक जानकारी पहुंचे। जो श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 फिलहाल चल रही है, आज 17वां दिन है और आज 19 जुलाई है और आज के दिन के लिए जो फिलहाल यात्रा है उसे मुलतवी कर दिया गया है मौसम के चलते, क्योंकि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी एक इतला के मुताबिक इस इलाके में यानी कि जम्मू के इलाके में मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने की आशंका जताई गई है और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है जम्मू में। और कुछ देर पहले हमने अपने जो जम्मू के संवाददाता है जावेद मेहराब उनके साथ बात की और उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि जो जम्मू में ऑरेंज अलर्ट वो जारी कर दिया गया है और भारी बारिशें होने की जो है चेतावनी जताई गई है और ये सलाह दी गई है यात्रियों को कि वो अपने अपने आधार शिविरों में ही कायम करें, ज़्यादा बाहर निकलने की घूमने की कोशिश ना करें क्योंकि वो किसी दुविधा में फंस सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे जो रामबन के संवाददाता हैं मोहम्मद तस्कीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ये हमें जो नेशनल हाईवे है राष्ट्रीय राजमार्ग उसके हवाले से और मौसम के हवाले से इनके पास क्या जानकारी है उनसे अवगत कराते हैं। जी तस्कीन साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में।
1: जी बहुत शुक्रिया।
0: जी
1: शुक्रिया।
0: मौसम के हवाले से कल से हम सुन रहे हैं कि मौसम ख़राब होने वाला है, जम्मू क्षेत्र में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और नेशनल हाईवे या जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके हवाले से आपके पास क्या जानकारी है और अभी जम्मू में कैसा मौसम बना हुआ है?
1: जी शुक्रिया। जैसे महकमा मौसमियात का जो पेशन गोई है बिल्कुल उसके एन मुताबिक आज रात से ही कहेंगे बादल बिल्कुल था, पूरा ये सेक्टर जो था रामन बनिहाल का हाईवे का जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का ये क्षेत्र है तो पूरा बादलों से घिरा हुआ था। कल हल्के हल्के फुहार जैसी बारिश हुई थी कुछ इलाकों में और आज सुबह फिर हल्की हल्की बारिशें हो रही है रामन और बनिहाल के सेक्टर में। और जो पहले ही जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया है कि 19 यानी आज 19 जुलाई से ऑनवर्ड्स टिल नेक्स्ट ऑर्डर्स अगले अहकाम तक या तो मौसम ठीक हो जाता है, साजगार हो जाता है, महफूज हो जाता है तमाम रास्ता और सड़क वगैरह यात्रियों के लिए, तब तक के लिए यात्रा को जो बंद करने का हुक्म दिया गया है। तो उसी के सिलसिले में जो कल कट ऑफ टाइमिंग था, जैसे हम रोज बोलते हैं कि 2 बजे बाद चंद्रकूट से आगे किसी भी यात्रा गाड़ी और टूरिस्ट गाड़ी को कश्मीर आने की इजाजत नहीं दी जाती है और इसी तरह बनिहाल से 3 बजे बाद किसी भी यात्रा या टूरिस्ट गाड़ी को कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। तो उसी के तहत जो कल ट्रैफिक रोका गया तो अगर हम कहेंगे तो सैकड़ों की तादाद में यात्रा गाड़ियां, खासकर हम यात्रा निवास चंद्रकूट की करेंगे बात, वहां पर रोकी गई है कल से और उन्हें अगले हुक्म तक रोका जाएगा जब तक दोबारा यात्रा रिज्यूम नहीं होती है, बहाल नहीं होती है। फिलहाल हल्की हल्की बारिशें हो रही है, मौसम बहुत खुशगवार बना हुआ है और जो कल ट्रैफिक यहाँ पहुंचा था श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से, जो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड लोग होते हैं, जो जो रूटीन की कॉन्वाई होती है जो भगवती नगर से पहलगाम और बालतल के रास्ते रोजाना निकलती है, उससे हटकर जो गाड़ियां आती हैं, जो भी ट्रैफिक आता है बहुत भारी होता है, वो भी बहुत सारी हजारों सैकड़ों गाड़ियां होती है, तो उन्हें कल रात से रोक दिया गया है और अभी वो मुसलसल रुकी हुई है बनिहाल में भी और खासकर चंद्रकूट के जो ये यात्रा निवास है वहां पर, और वहां पर उनको इंतजाम खाने पीने का सब कुछ रखा गया है तो इसलिए यात्रा फिलहाल बंद रहेगी तब तक जब तक अगली जो अहकाम सादर नहीं होते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मौसम के हवाले से। फिलहाल ये यात्रियों की जो सेफ्टी है उसके हवाले से ये कदम लिया गया ताकि किसी किस्म का कोई मामला पेश ना आए, क्योंकि हाईवे भी आपको पता ही, अगर बारिशें तेज होते तो हाईवे पे भी इशूज खड़े हो जाते हैं, उसके बाद जो आगे पहलगाम और बालतल के रास्ते जो पोतर गुफा की तरफ रास्ते जाते हैं तो वो भी बारिशों में इफेक्टेड हो जाते हैं। तो उसी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला लिया गया है तो यात्रियों की हिफाजत के लिए बहुत बेहतर और अच्छा फैसला है।
0: जी, जो फिलहाल ट्रैफिक है नेशनल हाईवे पर, क्या वो लोकल ट्रैफिक अभी चल रहा है या उन्हें भी फिलहाल रोका गया है?
1: नहीं, रोको ट्रैफिक को आज ज्यादा

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और ये प्रसारण आप एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल डीटीएच के साथ साथ हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी समाप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और आप तक ताज़ा तरीन जानकारियाँ पहुँचाने का सिलसिला जारी है। फ़िलहाल हम अपने जो श्रीनगर के संवाददाता हैं इमरान नाइक, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके पास जो मौसम के हवाले से कल से जानकारी दी जा रही है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा फ़िलहाल आज के लिए मुलतवी कर दी गई है और श्रीनगर में जो यात्री रुके हुए हैं उनके लिए क्या इंतज़ाम हैं और उनके पास क्या ताज़ा तरीन जानकारियाँ हैं। फ़िलहाल हमने अपने जो जम्मू के संवाददाता हैं उनके साथ बात की, उसके बाद हमने अपने बानिहाल के संवाददाता के साथ बात की जिन्होंने हमें ये बताया कि जो जम्मू का क्षेत्र है वहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि वहाँ भारी बारिशें होने की अपेक्षा जताई गई है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से। और उसके बाद हमारे जो बानिहाल के संवाददाता हैं उन्होंने बताया कि जो बानिहाल सेक्टर है, बानिहाल रामबन सेक्टर, वहाँ पे हल्की बारिशें अभी जारी हैं मगर जो लोकल ट्रैफिक है उसे दोनों तरफ से चलने की जो अनुमति है वो है। फ़िलहाल हल्की बारिशें हो रही हैं और घबराने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है मगर ये जो यात्रा पर रोक लगा दी गई है उसकी ये वजह बताई जा रही है कि यात्रियों की जो सुरक्षा है उसको मद्देनज़र रखा गया है। हमारे संवाददाता जो श्रीनगर के इमरान नायक उनके साथ बात नहीं हो पा रही है। हम अब रुख करते हैं जो हमारे गांदरबल के संवाददाता हैं रहीम रिजवान उनकी जानिब और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रांज़िट कैंप गांदरबल में है वहाँ पर कैसा माहौल है और क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं यात्रियों के लिए, क्या कुछ किया गया है प्रशासन के द्वारा और किस तरह की सुविधाएं, किस तरह का जो प्रबंध है वो किया गया है यात्रियों के लिए। हम आप तक लगातार ये बात पहुंचा रहे हैं कि ख़राब मौसम की जो पेशन गोई है कल हमें दी गई थी कि यात्रा आज 19 जुलाई से फ़िलहाल मुलतवी है क्योंकि मौसम में ख़राबी आने की वजह से जो दोनों मार्ग हैं, चाहे वो बालतल मार्ग हो या पहलगाम मार्ग हो, दोनों मार्गों पर जो है यात्रा करने में दुश्वारी हो सकती है यात्रियों को। फ़िलहाल हमारे साथ हमारे गांदरबल के संवाददाता रहीम रिजवान जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। रिजवान साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे वक्त देने के लिए।
0: जी, आपसे पहला सवाल ये कि जो आज यात्रा है 19 जुलाई के बाद की जो फ़िलहाल यात्रा है उसे मुलतवी कर दिया गया है और आप हमें ये बताइए कि जो ट्रांज़िट कैंप्स में अभी रुके हुए हैं यात्री, जो गांदरबल में ट्रांज़िट कैंप है वहाँ पे कैसा माहौल है और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ हिदायत दी गई है उनको?
1: सबसे पहले श्रोताओं को हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के का मौसम जो है वो कैसा है। इस वक्त भारी वर्षा हो रही है पूरे गांदरबल जिले में भी और आज सुबह सवेरे से ही बल्कि 4 बजे से ही जो बालतल क्षेत्र है वहाँ भारी वर्षा हो रही है। मौसम बिल्कुल खराब है और आकाश पे बादल छाए हुए हैं
0: जी।
1: तो इस दौरान जो यात्री यहाँ पहुंचे हैं वो बिल्कुल बालतल बेस कैंप में है और यहाँ जो दोनों ट्रांजिट कैंप है, चाहे चांदीपुरा ट्रांजिट कैंप है या मणिगांव ट्रांजिट कैंप है, तो शाम 5 बजे के बाद जितने भी यात्री हैं उनको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल वो यही रुके हैं दोनों ट्रांजिट कैंप में
0: जी।
1: और...

0: जी, बताइए।
1: अगर हम बात करेंगे यात्रियों के हवाले से तो देर रात गए तक जो दर्शन करके वापस सुरक्षित बाल तक बेस कैंप पहुंचे हैं तो उनकी संख्या 15,129 है।
0: जी
1: यानी जो श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करते हैं देर रात गए तक वो बाल तल बेस कैंप वापस पहुंचते हैं तो वो बीती रात 10 बजे तक 15,129 श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बाल तल बेस कैंप पहुंचे, जिनमें 11,116 पुरुष, 3,350 महिलाएं, 215 बालक बालिका, 90 साधु, 13 साधिया, 5 ट्रांसजेंडर, 340 सुरक्षा कर्मी शामिल थे।
0: जी
1: इन श्रद्धालुओं को भी आज बीती रात यही रुकना पड़ा बाल तल बेस कैंप में और आज सुबह सवेरे उनको आगे बढ़ने की यानी जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी गई। फिलहाल जितने भी यात्री हैं जहां पे रुके हैं चाहे वो ट्रांजिट कैंप में है या बाल तल बेस कैंप में है तो वो वहीं पे उनको कायम करने को कहा गया है, आगे बढ़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी गई है क्योंकि इस वक्त भी भारी वर्षा हो रही है।
0: जी, इंतजाम कैसे हैं जो हमारे ट्रांजिट कैंप्स हैं या आपने जो बालतल बेस कैंप की बात की, इंतजाम कैसे हैं और प्रशासन के द्वारा क्या हिदायत दी गई है इन यात्रियों को?
1: प्रशासन के द्वारा इनको ये हिदायत दी गई है कि वो जहाँ पे रुके हैं फिलहाल वहीं पे कायम करें और उनके लिए उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध रखी गई हैं। भोजन के हवाले से अगर हम बात करेंगे वहाँ लंगर लगाए गए हैं और उन्हें मुफ्त सुविधाएं दी जाती है, इसके साथ साथ पीने के लिए साफ पानी, बिजली और रिहाइश के लिए उम्दा बेडिंग का इंतजाम है। आप जानते हैं कि लंगरों में भी इंतजाम किए गए हैं और यहाँ टेंट भी जगह जगह लगाए गए हैं, इसके साथ साथ नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध रखी गई हैं और जिस पर लेकर यात्री पहले ही संतुष्ट थे और बाजार तो जो प्रशासन के अफसर है जिसमें डिप्टी कमिश्नर है, SSP गांधरबल है, वो इसकी निगरानी कर रहे हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रखी गई है श्रद्धालुओं के लिए। तो सुविधाओं के हवाले से कोई भी अभी तक शिकायत नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। तो इसके साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं जिसमें आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF, CRPF, SSB, ITBP, NDRF, SDRF और बीकन के अधिकारियों के अलावा वॉलंटियर्स भी यहाँ चाकुल चौबंद रखे गए हैं ताकि किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए बिल्कुल सुरक्षा कर्मी तैयार हैं और यात्रियों की सुरक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है जिला प्रशासन के लिए, लिहाजा हर तरह की सुविधाएं उनको दी जाती है ताकि इस तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि यात्री जहाँ पे है, अगर ट्रांजिट कैंप शादीपुरा में है, ट्रांजिट कैंप मनगांव में है या बेस कैंप बालतल में है या कुछ श्रद्धालु अगर ऊपर वहाँ भी पहुंचने में या रोवत जो है वहाँ भी लंगर लगाए गए हैं, उम्दा लंगर है, बेहतरीन सुविधाएं हैं वहाँ पे, तो जहाँ कहीं पे है उनको फिलहाल वहीं पे रुकने को कहा गया है।
0: जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो यात्री हैं वो सब्र से काम लें और जो हिदायत उन्हें प्रशासन के द्वारा दी गई हैं उन पे वो अमल करें ताकि उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली जानकारी के लिए।
1: शुक्रिया आपका।
0: ये थे हमारे गांधरबल के संवाददाता रहीम रिजवान जो हमें ये बता रहे थे कि जो मुख्तलिफ ट्रांजिट कैंप्स हैं और बालतल का जो बेस कैंप है वहाँ पर माहौल कैसा है और यात्रियों के लिए क्या कुछ सुविधाएँ, क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं और क्या कहा गया है यात्रियों से। कहा यही गया है कि वो आधार शिविरों में, ट्रांजिट कैंप्स में ही कायम करें क्योंकि उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।

श्रोताओं, अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आइए आकाशवाणी दिल्ली चलते हैं, जहां से हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में खबरें सुनेंगे हम।

0: पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
3: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5

0: कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1% है।
1: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिमवई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिमवई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
5: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड की इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. श्री अमरनाथ जी एंड वैष्णो देवी यात्रा टेम्पररीली सस्पेंडेड ड्यू टू रफ वेदर फोरकास्ट and England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
8: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking firm steps to verify authenticity before proceeding with any rechecking requests. The advisory underscores the growing challenge posed by artificial intelligence in academic and administrative processes. With easy access to AI image generation tools, some individuals appear to be attempting to fabricate evidence to challenge exam results. The NTA has made it clear that such practices will not be tolerated and will invite strict legal action. Manik Sharma, Akashwani News, Delhi.
7: The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal at the URL results.digilocker.gov.in. In line with the recommendations of the National Education Policy, the CBSE had introduced two board examinations for Class 10 from this year. The main board examination was conducted from 17th February to 11th March, followed by the second board examination from 15th May to 21st May this year. The CBSE said that the overall pass percentage after combining the results of the main and second board examinations of this year was 96.78%. In Jammu and Kashmir, Sri Amarnath Yatra will remain suspended from both the Pahalgam and the Baltal routes from today as a precautionary measure in view of the adverse weather forecast. The decision was taken following the India Meteorological Department's forecast of inclement weather over the next few days to ensure the safety and well-being of pilgrims. The official said no onward movement of Yatris will be allowed from the Baltal and Nunwan Chandanwadi base camps until further orders. Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board has also temporarily suspended the Vaishno Devi Yatra in view of the inclement weather advisory issued by the IMD. According to an official update issued by the Shrine Board, the decision has been made as a precautionary measure to ensure the safety and well-being of pilgrims. The authorities are continuously monitoring the weather situation and the Yatra will resume once conditions are considered safe for pilgrims. The IMD has warned of a fresh spell of heavy rainfall over parts of Jammu and Kashmir, with the possibility of flash floods, landslides and waterlogging in vulnerable areas. Administration has advised residents to avoid unnecessary travel and to stay away from water bodies. The Indian Meteorological Department has issued red and orange alerts for heavy to extremely heavy rainfall across Uttarakhand today. Continuous rainfall has been reported in several parts of the state, leading to a rise in the water levels of major rivers. More from our correspondent.
2: The IMD has issued a red alert for extremely heavy rainfall in Nainital, Champawat and Udham Singh Nagar district today. An orange alert has also been issued for heavy to very heavy rainfall in Dehradun, Tehri, Pauri, Haridwar, Uttarkashi, Rudraprayag and Bageshwar districts. Thunderstorm accompanied by lightning and intense spell of rain are also likely in several areas. Authorities have also been instructed to keep machinery and other essential resources ready along the landslide prone routes. Meanwhile, State Disaster Management Secretary Vinod Kumar Suman has appealed to residents, Chardham pilgrims and tourists to follow weather advisories and to avoid unnecessary travel. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
7: With the southwest monsoon remaining active over Himachal Pradesh, intermittent rainfall continued across most parts of the state since last night. Meteorological Center in Shimla has issued orange and red alerts for heavy rainfall in various districts till 21st July and has advised people to remain vigilant. A report.
3: The Meteorological Center Shimla has issued a yellow alert for today in seven districts, Una, Bilaspur, Hamirpur, Chamba, Kullu, Solan and Sirmaur, while an orange alert has been issued for Kangra, Mandi and Shimla districts. The department has also issued a red alert for heavy to very heavy rainfall on 20th July in Chamba, Sirmaur, Mandi and Kangra districts and on 21st July in Chamba, Sirmaur, Kullu, Mandi and Kangra districts. In view of the weather warnings, the state government has advised people to stay away from rivers, streams and landslide prone areas and to avoid unnecessary travel. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
7: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, who is on a four-day official visit to India, will meet Vice President C.P. Radhakrishnan in New Delhi today. During the meeting, both leaders will review the entire spectrum of India-Tanzania relations and explore new avenues for future cooperation. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will also call on the visiting dignitary today. The United States military has launched new airstrikes against Iran to punish the Iranian Revolutionary Guard for an attack in Jordan that killed two American service members, left one missing, and four requiring hospitalization. U.S. Central Command said the strikes were designed to further degrade Iran's ability to restrict the traffic of oil tankers through the Strait of Hormuz. The waterway accounted for roughly 20% of global oil supplies before the war. The new strikes came after the U.S. military announced its first troop deaths from direct Iranian fire since the opening days of the war, following a drone and missile attack on a base in Jordan on Friday. As part of our series People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to R. Madhavan, an acclaimed actor and director who has been honored with the prestigious Padma Shri.
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
7: To listen to this conversation, tune into 100.1 Akashvani Gold this morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. In sports news, in FIFA World Cup, England secured the bronze medal after defeating France 6-4 in a thrilling third-place match at Miami Stadium last night. Bukayo Saka became the second England player to score a hat-trick in a World Cup knockout match after Sir Geoff Hurst in the 1966 final. It was the highest-scoring World Cup game since Hungary beat El Salvador 10-1 in 1982, and the 10 goals were the most in a third-place match. On the other hand, Kylian Mbappe surpassed Lionel Messi's career World Cup scoring record and took the lead in the Golden Boot race with a pair of second-half goals. Mbappe reached 22 career goals, one more than Messi. The star striker finished this World Cup with 10 goals, two ahead of Messi in the race for the Golden Boot, which is awarded to the tournament's top scorer. The stage is all set as Argentina and Spain will face each other in the finals at New York New Jersey Stadium tonight. The match will begin at 12:30 a.m. as per Indian Standard Time. Kolkata, affectionately called the football capital of India, is in the grip of World Cup final fever as fans gear up for the high-octane final between Argentina and Spain. More from our correspondent.
9: Kolkata will stay awake tonight, so will the whole of Bengal. The FIFA World Cup final may be taking place thousands of miles away in New Jersey, but its excitement has reached every home in the state. Neighborhoods have been decked out in blue and white, and Lionel Messi jerseys are everywhere. The West Bengal Sports Department has arranged public screenings of the final at Nandan and the Akhtara Open Air Stage in Kolkata, besides venues across several districts. Giant screens have also come up at neighborhood clubs, housing complexes and multiplexes. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
7: Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced that restaurants, cafes and other eligible establishments across the city will be allowed to remain open till 4 a.m. tomorrow. In women's wrestling, Indian wrestler Kajal clinched the gold medal in the women's 76-kilogram category at the Budapest ranking tournament in Hungary yesterday. Facing diamond precious Guilford of the USA in a gripping gold medal clash, the young Indian wrestler exhibited immense tactical composure under pressure. India added two more silver medals to their haul through strong campaigns in the 53-kilogram and 57-kilogram weight divisions. In the 53-kilogram championship final, Indian wrestler Antim Panghal settled for silver after conceding her gold medal bout against Sweden's Emma Malmgren due to an injury. The series deciding third ODI between India and England will be played today at Lord's in London. The match will start at 3:30 p.m. Indian time. All-rounder Washington Sundar has been ruled out with a right hamstring injury sustained during the second ODI match in Cardiff. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mushtaba.
6: Thank you, Naresh. The news about India becoming the third country in the world with private orbital launch capability figures prominently on the front pages of newspapers this morning. India's maiden private orbital rocket mission takes off, writes Hindustan Times. India's private space era takes off with Mission Agman, notes Sunday Pioneer. 72nd National Film Awards, Article 370 wins Best Film, is a lead headline in the Sunday Statesman. Two U.S. military personnel killed as Iran ramps up retaliatory hits on neighbors is a top headline in the Times of India. Iran warns U.S. of unforgettable lessons, says Sunday Pioneer. In its editorial titled, Ordinary Life is Passé, Our Curated Images Are Glowing Perfection, We All Pay a Cost, the Indian Express writes that if beauty has become homogenized, so too has the visual record of what it means to live a good life. The paper writes that the point is not to celebrate collapse or to sneer at beauty, effort or pleasure. It is to be more honest about the price of perfection and more suspicious of the images that ask us to admire it. Under the caption, Never mind Bastille, India has stormed Paris Haute Couture Week, the Economic Times reports that Paris is no longer an impossible summit, but a destination Indian fashion can repeatedly aspire to while sustaining a presence there. And finally, under the headline, Final Face-Off, the Sunday Tribune carries pictures of Argentina's Messi and Spain's Yamal as the two nations vie for the world football crown tonight. And with that, it's back to you, Naresh.
7: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया ममुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या AI से तैयार की गई OMR शीट्स जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। CBSE ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तहान के नतीज का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णो देवी यात्राएं आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे मकाम के सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांसे का तमगा जीता, जबकि फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले आज सभी सियासी जमातों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाने को यकीनी बनाने के लिए सियासी पार्टियों का तआवुन चाहेगी। मॉनसून इजलास कल से शुरू होगा, जो अगले माह की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस की जाएगी और उन्हें मंजूर किया जाएगा। दस्तावेजात में रद्दोबदल से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने सख्त तंबीह जारी करते हुए तलबा और वालिदैन को जांच पड़ताल के लिए OMR शीट्स जमा कराने के बारे में एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि हाल ही में नजरसानी के लिए जमा कराई OMR शीट्स जाली या मस्नूई जहानत से तैयार करदा पाई गई हैं, जिसके बायस तमाम शिकायत की मजीद सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 10वीं क्लास के दूसरे बोर्ड इम्तहानात 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतायज डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल पर URL results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। कौमी तालीमी इस पॉलिसी की सिफारिशात से हम आहंगी करते हुए CBSE ने इस साल से 10वीं क्लास के दो बोर्ड इम्तहान शुरू किए थे। मेन बोर्ड इम्तहान 17 फरवरी से 11 मार्च और दूसरा बोर्ड इम्तहान 15 मई से 21 जुलाई तक मुनक़िद किया गया था। CBSE के मुताबिक मेन और दूसरे बोर्ड इम्तहान के मजमूई पास फीसद को जोड़कर इस साल नतायज 96.78% रहे। CBSE के मुताबिक बैरून मुल्क तलबा भी अपने नतायज डिजी लॉकर पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से आज खराब मौसम की पेशगोई के

नजर एहतियात के तौर पर बंद रहेगी। ये फैसला भारतीय महकमे मौसमियात की जानिब से अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की पेशगोई की वजह से मुसाफिरों की सलामती और तहफ्फुज को तवज्जो में रखते हुए किया गया है। हुकाम ने कहा कि अगले हुक्म तक बालतल और नुनवान चंदनवाड़ी बेस कैंप से यात्रियों की किसी भी तरह की आमदोरफ्त पर पाबंदी रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने

0: को मशवरा दिया गया है कि वो तहम्मुल से काम लें और श्राइन बोर्ड के सरकारी मवासलाती चैनलों के जरिए जारी की गई मालूमात को अपनाएं। हुक्काम लगातार मौसम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और यात्रा उसी वक्त फिर से शुरू होगी जब ये समझा जाएगा कि यात्रियों के लिए यात्रा पूरी तरह महफूज है। महकमा मौसमियात ने हसास इलाकों में अचानक सैलाब, मिट्टी के तोड़े खिसकने और पानी जमा होने के इम्कान के साथ जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों में फिर से शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। इंतजामिया ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करें और आबी इदारों से दूर रहें। वैष्णो देवी यात्रा ने इस साल एक अहम संग मील हासिल कर लिया है क्योंकि मुकदस गुफा के दर्शन करने के लिए यात्रियों की तादाद 50 लाख से ज्यादा पार कर गई है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज बारिश के सबब रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत के बहुत से हिस्सों में मुसलसल बारिश दर्ज की जा रही है जिसकी वजह से बड़ी नदियों की आबी सतह बढ़ती जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: IMD ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में आज बहुत तेज बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुतादिद जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो हसास मकामात की सख्ती से निगरानी करें और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को दिन रात फाल रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि राहत और बचाव टीमें बर वक्त तैयार रहें। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो तोदे खिसकने के ज्यादा खदशात वाले रास्तों पर मशीनरी और दीगर जरूरी वसाइल को तैयार हालात में रखें। वहीं आफात से निमटने के रियासती सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने रिहायशियों, चारधाम यात्रियों और सैयाहों से अपील की है कि वो मौसम से मुतालिक एडवाइजरी पर अमल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम।
0: हिमाचल प्रदेश में जुनूब मगरबी मानसून के सरगर्म रहने के साथ ही रियासत के बेशतर हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। शिमला के मौसमियात के मरकज ने मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश के मद्देनजर 21 जुलाई तक ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरला, माहे, उड़ीसा और शिमाल मशरकी भारत के हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। दिल्ली में IMD ने बादल छाए रहने और हल्की फुल्की बारिश की पेशगोई की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जंजीबार के सदर और इनकलाबी कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मिनयी, जो भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर हैं, आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा भारत तंजानिया ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और मुस्तकबिल में तआवुन के नए मौके तलाश करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी आज दौरे पर आए मेहमान से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आलमी जुनूब में भारत और तंजानिया के दरमियान बहुत से शोबों में करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अमरीकी फौज ने उर्दुन में एक हमले के लिए पासदारा ने इनकलाब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से फजाई हमले किए हैं। पासदारा ने इनकलाब के हमले में 2 अमरीकी फौजी अहलकार हलाक, 1 लापता और 4 फौजी जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कम करने के लिए किए गए ताकि आबनाए हुरमुज के रास्ते तेल से लदे जहाजों की आमद रफ्त को रोका जा सके। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र दुनिया भर में अमरीकी शहरियों के लिए सफर के सिलसिले में एहतियात बरतने की गरज से एडवाइजरी जारी की है। उसने खित्ते में अमरीका और ईरान की तरफ से जारी फौजी कार्रवाइयों के पेश नज़र बढ़ती हुई कशीदगी के साथ सिक्योरिटी के पेचीदा सूरत हाल के लिए खबरदार किया है। हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म की अगली किस्म में मारूफ अदाकार और हिदायतकार आर माधवन से बातचीत करेंगे, जो बावकार पद्मश्री एजाज याफ्ता हैं।
2: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत

0: और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: आप इस गुफ्तगू को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और न्यूज़ ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। रिवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टोरेट डीआरआई ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुल्क भर में कार्रवाइयां अंजाम दी हैं, जिसके नतीजे में बैरून मुल्क से स्मगल किया गया 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 22 करोड़ रुपए बताई जाती है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय करेंसी भी जब्त की गई है। वजारत खजाना ने बताया कि इन कार्रवाइयों के दौरान 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उसने मजीद बताया कि रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के अफसरों ने नई दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें स्मगल की गई कीमती धातें और नकद रकम जब्त की गई। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भोपाल जिले के जगदीशपुर में आज एक बड़ी तकरीब मुनाकिद करेंगे। वो 1460 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल करेंगे। ये रकम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अदा की जाएगी। फीफा आलमी कप में कल रात मियामी स्टेडियम में तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए एक सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 4-6 से हराने के बाद कांसे का तमगा जीत लिया है। दूसरी जानिब आज न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आलमी कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 12:30 शुरू होगा। भारत की फुटबॉल की राजधानी समझे जाने वाले कोलकाता में फुटबॉल शायकीन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आज देर रात होने वाले सनसनीखेज आलमी कप का फाइनल मैच देखने के लिए पूरे जोशो जज्बे और बेसब्री से इस मैच को देखने के लिए बेहद मुंतजर है। शहर की सड़कों पर फुटबॉल शायकीन अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की जर्सियां पहने हुए हैं। मगरबी बंगाल की हुकूमत मुख्तलिफ अहम मकामात और रियासत के सभी जिलों में फुटबॉल मैच दिखाने के लिए बड़े स्क्रीन का एहतमाम कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: आज रात कोलकाता जागता रहेगा और पूरे बंगाल में ऐसा ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप भले ही हजारों मील दूर न्यू जर्सी में हो रहा हो, लेकिन इसका जोश रियासत के हर घर तक पहुंच गया है। मोहल्ले नीले और सफेद रंग से सजे हुए हैं और मैसी की जर्सी हर जगह नजर आ रही है। मगरबी बंगाल के महकमा खेल ने कोलकाता के नंदन और एक तारा में ओपन एयर स्टेज का इंतजाम किया है, ताकि फुटबॉल का फाइनल मैच लोग अवामी स्क्रीनिंग पर देख सकें। क्लब्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेसेस में बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग लगाई गई हैं। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: इस दौरान दिल्ली की वजीर आला मोहतरमा रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि शहर के रेस्तरां, कैफे और दीगर अहल मराकज कल सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि इस फैसले से फुटबॉल के शायकीन को यकजा होने और खेल से लुत्फानंदोज होने का मौका मिलेगा। नीज शहर की रंगारंग नाइट लाइफ और मकामी कारोबार को फरोग हासिल होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान एक रोजा बैनल अक्वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। खवातीन कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी में बुडापेस्ट दर्जाबंदी टूर्नामेंट में खवातीन के 76 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं शबाना बेगम।
3: शुक्रिया आसिया। राजधानी से शाया होने वाले मुख्तलिफ उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। बेशतर उर्दू अखबारात ने खलाई शोबे में भारत की कामयाबी से मुतालिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, भारत ने खलाई शोबे में नई तारीख रकम की, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी से खला में रवाना, वजीर आजम मोदी ने मुबारकबाद दी। रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि भारत दहशतगर्दी को हर महाज पर जवाब देने की ताकत रखता है। रोजनामा प्रताप की अहम खबर है, हरियाणा हुकूमत महत्वाकांक्षी जंगल मित्र स्कीम के तहत 50,000 जंगल मित्र बनाएगी, ताकि आम लोग माहौलियात की बेहतरी में अपना ताउन दे सकें और जरिया मौश भी हासिल कर सकें। तकरीबन सभी अखबारात ने फीफा आलमी कप के फाइनल की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तहान से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या AI से तैयार की गई OMR शीट जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। CBSE ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णव देवी यात्राएं आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
4: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH के साथ साथ हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 17वां दिन है। आज 19 जुलाई 2026 है। आज खराब मौसम के कारण जो अमरनाथ जी यात्रा है फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा, मौसम सही हो जाएगा, यात्रा को फिर से चालू कर दिया जाएगा। जम्मू में ऑरेंज अलर्ट है और श्रीनगर में इस वक्त विभिन्न जगहों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो रही हैं और हम उम्मीद यही रखते हैं, अपेक्षा यही रखते हैं कि मौसम जल्दी से सही हो और यात्रा फिर से जारी हो। यात्रा को इसलिए रोका गया क्योंकि जो दोनों मार्ग हैं, चाहे वो बालतल का मार्ग हो या पहलगाम का मार्ग हो, इसमें खड़ी चढ़ाई है और बारिशों के मौसम में, खराब मौसम में यात्रा करना बहुत ही घातक हो सकता है, बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है और प्रशासन ये नहीं चाहती कि किसी भी यात्री को, किसी भी मेहमान को कोई किस्म का कष्ट हो। जो यात्री फिलहाल विभिन्न आधार शिविरों में रुके हुए हैं, बेस कैंप्स पर रुके हुए हैं या दूसरी जगहों पर रुके हुए हैं, उन्हें ये मशवरा दिया गया है कि फ़िलहाल वो सब्र का इजहार करें, सब्र से काम लें और सब्र से उनको ये होगा कि जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी कि वो जाकर अपनी यात्रा को मुकम्मल करें। फिलहाल जो हमारा सिलसिला है हमारे संवाददाताओं से जुड़ने का, वो जारी रखते हुए हम अपने जो श्रीनगर के संवाददाता हैं इमरान नायक, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। और जो श्रीनगर में इस वक्त मौसम का हाल है उसके हवाले से उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायक। इमरान, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में।
5: जी बहुत शुक्रिया
4: जी। मौसम के हवाले से क्या जानकारी है आपके पास और जो यात्रा फिलहाल आज के दिन के जो है मुलतवी कर दी गई आज के दिन के लिए, उसके हवाले से आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं?
5: देखिए बिल्कुल, जैसे कि कल ही मौसम विभाग ने या जो वेदर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से प्रेडिक्शन दी गई थी कि जम्मू और कश्मीर में मौसम काफी खराब रहेगा और उस मौसम के चलते हुए अमरनाथ जी यात्रा को भी आज दिन के लिए सस्पेंड किया गया। और जहां तक आज श्रीनगर का ताल्लुक है, पिछले तकरीबन 1 घंटे से शहर में काफी तेज बारिश हो रही है और जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी लो है और अभी भी इस वक्त भी काफी तेज बारिश श्रीनगर शहर में हो रही है और कई सारे इलाकों में इस बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग भी हुई है। लेकिन ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि इस सिलसिले में पहले से ही प्रेडिक्शन भी थी और गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में पहले से ही तैयारियां भी की थी कि किस तरीके से इस एडवर्स वेदर को जो है इस सिचुएशन में किस तरीके से इंतजामिया या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों को हेल्प करेगी या कोई प्रॉब्लम ना होने देगी। और हालांकि अभी सुबह का वक्त है, ज्यादा ट्रैफिक तो होता नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि आज मौसम बहुत खराब है और इस वक्त काफी तेज बारिश हो रही है। और जहां तक ट्रांजिट कैंप का ताल्लुक है, श्रीनगर के ट्रांजिट कैब में आज रात काफी सारे जो यात्री हैं जो पवित्र गुफा के दर्शन करके

0: लौट आए थे और वो उन्होंने यहाँ पे नाइट स्टे किया और तकरीबन लगभग 657 यात्री, जिनमें से मेल, फीमेल, बच्चे, साधु, साध्वी मौजूद थे, वो एक कॉन्वॉय में आज वापस सुबह श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के जरिए से वापस रवाना किए गए पंथाचौक ट्रांजिट कैंप से। और इसके अलावा एक और जो जिनमें से तकरीबन 25 जो गाड़ियां थी उनमें इन अमरनाथ जी यात्रियों को रवाना किया गया, जिसमें 203 फीमेल थी और 439 मेल थे, 13 चिल्ड्रन और 2 साधु भी इसमें शामिल थे।
1: जी
0: और इन यात्रियों को वापस तो, लेकिन बाकी जो है आज, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि आज मौसम काफी खराब है, तो जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने आज दिन के लिए यात्रा को सस्पेंड किया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अभी जो बारिश हो रही है, अभी जो मौसम काफी खराब है, देर तक थोड़ा सा 1-2 घंटे के बाद मौसम में बेहतरी आएगी। जैसे कि मौसम विभाग ने भी कहा है कि मौसम जो है काफी खराब भी रहेगा, लेकिन उसके बाद अब मौसम में बेहतरी भी आएगी, इसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा।
1: अच्छा, जो ट्रांजिट कैंप में अभी पांथा चौक में रुके हुए हैं यात्री, उनके सुविधा के लिए क्या इंतजाम हैं और उन्हें क्या दिशा निर्देश
0: बिल्कुल
1: दिया गया है?
0: बिल्कुल, देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से यात्रा शुरू हुई तब से ही, उससे पहले भी यात्रियों के लिए यहाँ ट्रांजिट कैंप में पहले से ही अरेंजमेंट जो है वो एंश्योर थे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जब से यात्रा शुरू हुई हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो आला अधिकारी है
1: जी
0: वो यहाँ पे आ रहे हैं और यात्रियों के साथ मिल रहे हैं और उनको यात्रा को लेके या अरेंजमेंट्स को लेके वो उनका फीडबैक हासिल कर रहे हैं। आज भी कई सारे अभी यात्री इस ट्रांजिट कैप में है, जिन्हें कल अगर मौसम बेहतर रहा तो कल उन्हें अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन उन्हें किसी किस्म की यहाँ दिक्कत नहीं है। आप देखिए अभी सुबह काफी तेज बारिश हो रही है,
1: जी
0: लेकिन जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जो इस डिजास्टर सिचुएशन में इन चीजों को देखती है, तो वो सारे ऑन टो है। हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं है खुदा ना खास्ता कि ज्यादा पानी दाखिल
1: जी
0: हुआ है,
1: जी जी
0: जैसे मैंने कहा कि ये वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही कहा गया था और गवर्नमेंट भी पहले से ही रेडी थी। और इस सब के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग, जो उनके एम्प्लॉयज है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हिदायत है कि डिफरेंट महकमों के जो अहलकार है वो ऑन टो है, ताकि किसी किस्म की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, पानी अंदर दाखिल ना हो जाए। और यात्रियों के लिए खाने पीने की सारी सुविधाएं यहाँ पे रखी गई है, हर तरीके की सुविधाएं यात्रियों के लिए रखी गई है। और अच्छी बात ये भी है कि जो शहर में पिछले 2-3 हफ्तों से हीट वेव थी
1: जी
0: और इस बारिश से, बारिश की वजह से अब यहाँ के लोकल्स ने भी और अमरनाथ जी यात्रियों को भी थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि हीट वेव की वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो बारिश हो रही है और बारिश की वजह से काफी बेहतर मौसम जो है, ठंड हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने अब थोड़ी सी रिलीफ भी हासिल किया है, राहत भी ली है। लेकिन ओवरऑल श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैब में, जैसे मैंने कहा कि हर तरह की अमरनाथ जी यात्रियों के लिए सुविधाएं रखी गई है, जो यात्री आ रहे हैं, जो यात्री जहां पर हैं या जो यात्री आने वाले हैं, और साथ साथ हर दिन हमारी अमरनाथ जी यात्रियों के साथ बात होती है और इस ट्रांजिट कैब में उनको हम अरेंजमेंट्स को लेके उनसे उनका फीडबैक हासिल करें, लेकिन सभी यात्री जो है वो काफी खुश है इंतजामिया की इन अरेंजमेंट्स को लेके, खासकर जो आर्मी पुलिस या बीआरओ ने जो काम किया है
1: जी
0: ट्रैक्स पर, या बाकी जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, या फिर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने जो काम किया है या काम कर रहा है, या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी महकमे हैं, अधिकारी अहलकार जो है वो काम कर रहे हैं, सबको लेके हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्री जो है एक अपना पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं।
1: जी जैसा कि अभी सुनने में हमें आया है कि जम्मू के लिए जो ऑरेंज अलर्ट वो दिया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे भारी बारिश होने का अंदेशा जताया जा रहा है। क्या इस तरह का कोई अलर्ट कश्मीर के लिए है या कश्मीर में जो आने वाले दिनों में मौसम रहने वाला है उसके हवाले से आपके पास क्या जानकारी है?
0: बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि ये जो जम्मू के लिए एक अलग एडवाइजरी जारी की गई, यहाँ पर भी डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जैसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा ने एडवाइजरी जारी की है अपने कॉन्टेक्ट नंबर, लेकिन कश्मीर में अभी तक एज इस तरीके की कोई ऑरेंज अलर्ट या बाकी इस तरीके की एडवाइजरी जारी नहीं की गई है।
1: जी
0: उसकी वजह यह है कि कल ही जो मौसम विभाग है, जो मौसम जो वेदर डिपार्टमेंट है, उन्होंने पहले ही कहा है कि ज्यादा जो बारिशों का असर है, हैवी टू हैवी रेनफॉल जो है वो

0: जम्मू में होगा
1: जी।
0: और इसलिए कश्मीर में भी एहतियाती तौर पर अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन अभी कश्मीर में जो है उस तरीके की सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है
1: जी। हम उम्मीद यही रखते हैं कि मौसम में जी उम्मीद यही रखते हैं कि जम्मू और जम्मू के साथ साथ घाटी में भी मौसम जल्दी से बेहतर हो और जो श्री अमरनाथ जी यात्रा फिलहाल रुकी हुई है वो फिर से शुरू की जाए। आपका इस तफसीली जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया।
1: ये थे हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू जो हमें मौसम के हवाले से जानकारी दे रहे थे और जो मुख्तलिफ ट्रांज़िट कैंप्स हैं पांथा चौक ट्रांज़िट कैंप या मुख्तलिफ दीगर जगहों पर जो यात्री रुके हुए हैं उनके लिए क्या हिदायत क्या मशवरे दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा उनसे अवगत करा रहे थे। और इन्होंने हमें ये बताया कि जो मौसम विभाग है उन्होंने फ़िलहाल घाटी कश्मीर घाटी के लिए ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया है और ये संभावना जताई जा रही है कि घाटी में कई एक जगहों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होने का जो है अनुमान जताया गया है। और साथ में ही जो मुख्तलिफ ट्रांज़िट कैंप्स में यात्री रुके हुए हैं उनके इंतज़ाम में भी किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उम्मीद यही हम करते हैं कि मौसम में जल्दी से तब्दीली आए और जो यात्रा अभी रुकी हुई है वो फिर से चालू हो जाए। फिलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9596990954 पर हम तक अपनी कोई भी बात अपना कोई भी सुझाव अपनी कोई भी शिकायत पहुंचा सकते हैं एसएमएस या व्हाट्सएप के ज़रिए। और akashvanibaltal@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्रशासन के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर्स श्रीनगर और जम्मू अजला के लिए जारी किए गए हैं उन पर भी आप राबिता कायम करके कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। श्रीनगर के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-1807199 और इसी तरह से जम्मू के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-1807198। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जारी है। हम जल्दी ही वापस आएंगे और हमारे जो अनंतनाग के संवाददाता हैं तारिक उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ताज़ा तरीन जानकारी एकत्रित करने की भरपूर कोशिश करेंगे।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट ऊनी मोजे मफलर रेनकोट छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
2: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल मेवे भुने हुए चने टॉफी गुड़ चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण जारी है। आप हमारा ये विशेष प्रसारण FM बालथल, FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म वीव्स पर भी सुन रहे हैं। हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहे हैं, अपडेट्स आगे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज यात्रा का 17वां दिन है और आज 19 जुलाई से फिलहाल श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 मौसम की खराबी के कारण रोक दी गई है, लेकिन हमारा जो सिलसिला है अपने संवाददाताओं से बात करने का वो जारी है। और हम इस हवाले से अभी अपने एक और संवाददाता एस तारिक साहब से जुड़ चुके हैं और ये हमें जो हमारा अनंतनाग का इलाका है उसके हवाले से जानकारी देते हैं, जो पहलगाम मार्ग है उसके इर्द गिर्द क्या कुछ माहौल है इस वक्त। आपका खैर मकदम है तारिक साहब इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत शुक्रिया आप रशीद साहब, और अपने प्रिय श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: जी बताइए, आपके पास क्या ताज़ा जानकारी है? जो मौसम विभाग ने कल चेतावनी जारी की थी और जो फिलहाल यात्रा जो है मुलतवी कर दी गई है, इसके हवाले से आपके पास क्या ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं?
1: बिल्कुल जी, जब हम यात्रा करते हैं पूरे इस मामले को आज सुबह से ही, तो पहलगाम के अमरेश्वरी पर्वतों और उनके आसपास के क्षेत्र में आज प्रकाश उभरालुद है और बारिशों का सिलसिला भी जारी है। तो भारतीय मौसम विभाग के और से आइंदा कुछ दिनों तक अनुकूल न रहने वाले मौसम की जो घोषणा की गई है, या देखते हुए उन्होंने श्री अमरनाथ जी यात्रा को यात्रियों की सुरक्षा और कुशलता के मद्देनजर आज 19 जुलाई से आर्थिक रूप से निलंबित कर दी गई है। ये तो बिल्कुल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने बताया, और इसके साथ ही जम्मू से भी जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू है रमेश कुमार जी, उन्होंने भी बताया कि किस कारण आज निलंबित रहेगी यात्रा। यात्रा तो इसीलिए सिर्फ इसमें मौसम का मामला है, क्योंकि मौसम का बिगड़ने का जो अभी दौर चल रहा है, जो मौसम विभाग की तरफ से कुछ दिनों तक अनुकूल रहने की जो मौसम की बात कही गई है, तो श्री अमरनाथ जी यात्रा को सुरक्षा और कुशलता की मद्देनजर आज 19 जुलाई से आर्थिक तौर पर निलंबित रखी गई है।
0: अभी का जो मौसम है, अभी पहलगाम में कैसा मौसम है? क्या अभी बारिश हो रही है या बादल घिरे हुए हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बारिशें हो रही है। प्रशासन के अनुसार जैसे ही मौसम में सुधार आएगा तो यात्रा मार्ग को सुरक्षित करार दिया जाएगा, तब श्री अमरनाथ जी यात्रा को आवागमन फिर दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो बारिशों का सिलसिला है तेज है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, खासकर जो पहलगाम से लेके गुफा तक वहाँ जो फिसलन भरे रास्ते हैं, तो उस वजह से ये जरूरी बनता है कि निलंबित रखी जाए यात्रा को, रोक दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो सुरक्षा की बात होती है यात्रियों की, क्योंकि ये ऊंचे पर्वत है, ग्लेशियर वाले एरिया है, तो इस वक्त भी बारिशें हो रही है और सारे जो श्रद्धालु है अभी वो अपने अपने कैंपू में बैठे हैं। बिल्कुल, अगर वो 10 दिन भी वहाँ बैठते हैं, वहाँ कोई इंतजाम की कमी नहीं है, कोई परेशानी की बात वहाँ नहीं है। बिल्कुल इस वक्त भी लोग जो है हजारों में नुनवन आधार शिविर में बैठे हुए हैं, जहाँ मैं आपको बता दूं तकरीबन 10,000 लोगों के रहने की जगह है, और इस वक्त भी तकरीबन तेरह शुद्ध लंगर वहाँ हाइजीनिक तरीके से स्थापित किए गए हैं, और वो आनंद ले रहे हैं अपने इस मौसम में भी, और खान पान और क्याम के लिए वहाँ टेंट लगे हुए हैं, 6,600 टेंट लगभग लगे हुए हैं, लगभग दो बड़े हट्स हैं, 8 अभी छोटे हट्स हैं, बहुत सारा इंतजाम है वहाँ, कोई परेशानी नहीं। इसी तरह चंदनवारी, इसी तरह शिशनाग, वहाँ भी बिल्कुल बाजाबता तौर पर उनके लिए रहने का इंतजाम है, और जब तक मौसम की तरफ से हमें अनुमति ना मिलेगी तो तब तक ये सिलसिला भी यात्रा का बंद रहेगा। और अभी जम्मू से भी कोई, आज जैसा आपको भी पता है, जम्मू से भी कोई काफिला नहीं आया है जी। तो आज दिन भर आकाश में जो बादल छाए रहेंगे और दोपहर के बाद कहीं कहीं हल्की सी मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। इस समय जब हम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है, यानी अभी थोड़ा सा पसीना है ही, बारिशें हो रही है लेकिन कोई ठंड नहीं है ज्यादा। तो जबकि रात के समय का जो हमें बताया गया है कि मौसमियात की तरफ से कि रात का जो तापमान रहेगा वो 14 डिग्री सेल्सियस भी रहेगा, लेकिन उसमें भी ये चीज है कि वो कोई ठंड वाली मौसम ज्यादा नहीं होगी, तो बड़ा एंजॉय करेंगे यात्री, एंजॉय करेंगे जो वहाँ अपने अपने कैंपों में रुके हैं।
0: जी
1: तो इस तरीके से हम दुआ करते हैं कि जो मौसम जो है वो ठीक हो जाए और फिर से ये श्रद्धालु अपने मन की शांति के लिए यहाँ आए और अपना जो दर्शन का जो सिलसिला चल रहा है वो दोबारा शुरू हो जाए।
0: जी हमारी भी यही कामना है, यही दुआ है कि मौसम में जल्दी से सुधार आए, क्योंकि जो यात्री हैं बड़े उम्मीदों के साथ, बड़ी अपेक्षाओं के साथ देश के विभिन्न भागों से आते हैं या विभिन्न मुल्कों से आते हैं यहाँ पर। और ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि इंतज़ाम में कोई कमी नहीं है, यात्रियों के रुकने का अच्छे से इंतज़ाम है, और जो प्रशासन है वो लगातार कोशिशें कर रही हैं कि जो यात्री अभी घाटी में रुके हुए हैं, जम्मू में रुके हुए हैं या मुख्तलिफ आधार शिविरों में रुके हुए हैं, उनकी सुविधा में कोई कमी ना हो। आपका इस तफसीली जानकारी के लिए, इस तफसीली रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ये थे हमारे संवाददाता अनंतनाग से एस तारिक, जो हमें मौसम के हवाले से जानकारी दे रहे थे, और जानकारी दे रहे थे कि मौसम या अभी के जो इंतज़ाम है वहाँ पे क्या कुछ लेखा जोखा इन्होंने हमें दिया, आपने सुना। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि मौसम में जल्दी से सुधार आए और यात्रा को फिर से बहाल किया जाए। आज यात्रा का 17वां दिन है और आज 19 जुलाई है। आज यात्रा मौसम के हवाले से, जो मौसम में बदलाव आया है खास करके जम्मू क्षेत्र में, उसके हवाले से यात्रा को फ़िलहाल निलंबित किया गया है आर्जी तौर पर। और जम्मू में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जम्मू के जो डिवीज़न है वहाँ पे भारी बारिशें होने की चेतावनी जताई गई है। हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भक्ति

0: संगीत से सराबोर होते रहिए।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

0: श्रोताओं, आइए अब उर्दू में खबरें सुनते हैं हमारे स्टेशन से।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी निसाबी किताबों के अलावा हर माह कम से कम एक किताब जरूर पढ़ें, जबकि नौजवान कलमकारों से अपील की कि वो रोजाना कम से कम एक सफा लिखने की आदत डालें। वो एसकेएसीसी श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल के तीसरे एडिशन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह बुक फेस्टिवल नौजवानों को रोजाना मुताला करने, मादूम होती जुबानों के तहफ़ और अदब के जरिए तनु की कदर मंजिलत को फरोग देने की तरगीब देगा। एलजी ने कहा कि किताबें इंसान को गहराई से सोचने, सवाल पूछने, अपने नजरियात का जायजा लेने और मुसलसल आगे बढ़ने की तहरीक देती हैं।
2: मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे बच्चों के पास अपनी पहचान की जड़ें भी हों और भविष्य की उड़ान के लिए पंख भी हों। इसलिए जम्मू कश्मीर के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने भी हमारे डिजाइन योर डिग्री जैसे इनिशिएटिव के द्वारा यहाँ के नौजवानों को मोटिवेट करने का काम किया है। वे पुस्तकों को बोझ नहीं बल्कि अपना साथी समझें, ये प्रयास उच्च शिक्षा विभाग और हमारे विश्वविद्यालयों ने किया है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ।
1: वाजरे चिनार बुक फेस्टिवल 26 जुलाई तक जारी रहेगा। समाजी इंसाफ एम्पावरमेंट के मरकजी वजीर मुमलिकत रामदास अठावले ने लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। इधर जम्मू कश्मीर अदर बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर एसोसिएशन के एक वफद ने जिला सदर महराजुद्दीन शेख की क्यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। वफद ने सफाई अमले की फलाह बहबूद से मुतलिक मुख्तलिफ मसाइल एल जी की नोटिस में लाए। राइज अप यूथ फाउंडेशन के चेयरमैन अनुज शहनाज खान ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके नौजवान और अवामी बहबूद से मुतलिक मामलात उजागर किए। मरकजी हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज सभी सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई असम तरीके पर चलाने के लिए सियासी पार्टियों से ताउन तलब करेगी। वाज रहे कि पार्लियामेंट का यह मानसून इजलास 13 अगस्त को इख्ताम को पहुंचेगा। इजलास के दौरान बहस और मंजूरी के लिए मुतअद्दिद बिल पेश किए जाएंगे। खराब मौसमी सूरतहाल के पेश नज़र इंतजामिया ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज दोनों रिवायती रास्तों बालतल और पहलगाम से आर्जी तौर पर मुअत्तल की है। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कहा है कि यह फैसला यात्रा के रास्ते पर मुमकिन खराब मौसमी सूरतहाल के तनाजुर में यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर लिया गया है। यात्रियों से कहा गया है कि वह जम्मू, उधमपुर और रामबन में अपने मुकर्रर कयामगाहों पर ही रहें और हुकाम की जानिब से मजीद हिदायत का इंतजार करें। वाज रहे श्रीनगर की शाम तक 4.25 लाख के करीब यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। उधर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा भी हुकाम ने खराब मौसम के बायस आज आर्जी तौर पर मुअत्तल की है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में जारी गर्माई तातीलात में मजीद 3 रोज की तौसी की है। ये तालीमी इदारे अब 22 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस हवाले से वजीर तालीम सकीना इतु ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि तातीलात में इजाफा मुमकिन नामवाफिक मौसमी सूरतहाल के पेश नज़र किया गया है। अमूरी नौजवान और खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों खासकर ख्वातीन के खेलों में भरपूर शिरकत यकीनी बनाने के लिए साजगार माहौल पैदा करने और खेलों के बुनियादी ढांचे को वसत देने के लिए पुरअज़म है। वो कल जम्मू में करगिल विजय दिवस तकरीबात के सिलसिले में ख्वातीन मोटरसाइकिल सवारों की एक रैली राइड विद प्राइड 3.0 को झंडी दिखाकर रवाना करने के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। इस वक्त आकाशवाणी के FM बालतल से FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आज 19 जुलाई है और यह आज यात्रा का 17वां दिन है, लेकिन आज खराब मौसम के कारण यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही यात्रा चालू होती है, मौसम में बदलाव आता है, तब्दीली आती है, यात्रा को फिर से चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल जो भी यात्री घाटी के विभिन्न भागों में, विभिन्न आधार शिविरों में रुके हुए हैं, उनकी जो है उनके लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं, उनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने देंगे। जो भी प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दिए गए हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, पानी विभाग हो, या फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट हो, या मुख्तलिफ जो वहाँ पे लंगर वगैरह चलते हैं उनका इंतज़ाम हो, उनमें किसी किस्म की कोई कमी की हमें फ़िलहाल कोई शिकायत नहीं है। और जो श्राइन बोर्ड है, श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड, वो भी अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ आधार शिविरों में जाकर, और हर एक फ़िलहाल इस स्थिति में भी अपना काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस स्थिति पर खुद कड़ी निगाह रखे हुए हैं।

जो सेहत से जुड़ा विभाग है, उन्होंने भी जो गाइडलाइंस है वो जारी की हैं यात्रियों को, क्योंकि मौसम में तब्दीली के बाद जो हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं वो तब्दील हो जाती हैं और हम गर्म मौसम से जल्द ही एक ठंडे मौसम में प्रवेश करते हैं, तो उसकी वजह से हमें कई एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फ़िलहाल जो हमारे संवाददाताओं ने हमें मुख्तलिफ भागों से जानकारी दी, उन उसके मुताबिक मौसम खुशगवार है, क्योंकि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, खासकर घाटी में। और आज जैसे ही बारिशें शुरू हुई या बादल मंडराने लगे, तो लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की। और कल की जहां हम बात करें, तो कल बालतल मार्ग से 15,129 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, और आज की डेट में सुबह 2,570 यात्री, इनमें से जो है उन्हें भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप की तरफ रवाना किया गया। और जो ये पूरा घटनाक्रम है, जो ये पूरा पूरी जो ये स्थिति है, इस पर नज़र रखने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो HMT श्रीनगर में है वो अपना काम कर रहा है, और किसी भी किस्म की अगर कोई छुटपुट घटना होती है तो वो उसका तुरंत समाधान करते हैं। फिलहाल जो एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन के द्वारा, उसके मुताबिक हमें सब्र से काम लेना है, क्योंकि सब्र ही एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी परिस्थितियों में हमारा साथी बनती है और हमें सबक सिखाती है, क्योंकि सब्र करना ही इंसान को सिखाता है कि किसी भी सिचुएशन में अगर इंसान पड़ जाए तो वो उससे कैसे निकल सकता है। और हमारी भी यात्रियों से यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि आप सब्र से काम लीजिए और दुआ कीजिए कि मौसम में जल्दी से बेहतरी हो, और ताकि आप अपनी जो ये यात्रा है, अपना ये जो सफ़र है, पवित्र सफ़र, इसको आगे और जारी रखें। फ़िलहाल आप भक्ति संगीत सुनते रहिए, और हम जैसे हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुँचती हैं, हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।

0: श्रोताओं, इसी बीच हमारे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजी जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर मुख्तार अहमद टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हम इनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
0: सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो लेटेस्ट वेदर कंडीशंस हैं जम्मू एंड कश्मीर के पूरे इलाके में, क्या है इस वक्त जो मौसम का ताज़ा तरीन हाल है?
1: जी, अभी इंटरमिटेंटली बारिशें हो रही हैं और जैसे एक्सपेक्टेड था, एक हैवी स्पेल जम्मू रीजन के अंदर कल देर रात और आज मॉर्निंग के बीच में देखा गया, जिसमें
0: जी
1: काफी ज्यादा बारिशें हुई, स्पेशली पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर और जो अज्ञानी एरिया थे, इन सारे जगहों पे, कुछ एक जगहों पे वेरी हैवी रेनफॉल तक जो है मोर देन 100 मिलीमीटर ऑफ रेन
0: जी,
1: और काफी ज्यादा इससे तबाही हुई है, फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइड और कुछ जगहों पे गाड़िया वगैरह भी जो है वॉश अवे हुई है। तो अभी कमिंग डेज में भी फोकस, जैसे ऑलरेडी एडवाइजरी भी इशू किया है इस जिमन में, तो इंप्लीमेंट वेदर कंडीशन टिल 23rd of July रहता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और मेजर इम्पैक्ट जो है जम्मू रीजन के अंदर रह सकता है, बलभूटूर जो पीर पंचाल रेंज है और जो अडजॉइनिंग चिनाब वैली, तो बारिशें रहेंगी अभी टिल 23rd, और यहाँ वैली के अंदर भी बारिशें होंगी थोड़ा, साउथ कश्मीर और कुछ एक नॉर्थ कश्मीर के भी जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे वैली के चांसेस हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है थोड़ा मॉडरेट शावर, बीच बीच में ब्रीफ इंटेंस शावर के भी चांस हैं, तो मौसम जो है इस हिसाब से बना रहेगा। और ये जो बारिशें हैं ये लेट आफ्टरनून इवनिंग आवर्स के दौरान ज्यादा इंटेंस होंगे और लेट नाइट मॉर्निंग आवर्स में जो इसका ज्यादा इंटेंसिटी होगा, तो थोड़ा सा एहतियात करें, खासकर ट्रेवलर, टूरिस्ट, ट्रांसपोर्टर, जनरल पब्लिक, ट्रेकर, जो भी स्टेक होल्डर हैं, तो थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है।
0: जी सर, सर इससे जो अमरनाथ यात्रा भी चल रही है उसकी वजह से इसे फिलहाल टेम्परेली सस्पेंड कर दिया गया है, आपका जो यात्री हैं जो अभी रुके हुए हैं यहाँ मुख्तलिफ बेस कैंप्स में, उनके लिए क्या ये मशवरा है?
1: बिल्कुल, अभी जैसे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कॉल लिया है कि टिल वेदर इंप्रूव तब तक यात्रा जो है थोड़ा सस्पेंडेड रहेगा, तो कॉपरेट करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये अपना सेफ्टी के लिए है प्रेसिडेंट्स का, और जैसे ही मौसम साफ होता है तो फिर से जो है ओपनिंग शुरू होगा।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजी श्रीनगर डॉक्टर मुख्तार अहमद बात कर रहे थे और इन्होंने ये बताया कि जो मौसम अभी बना हुआ है वो अभी ऐसा ही बना रहने का इम्कान है, फिलहाल एक दो दिनों तक ये मौसम ऐसा ही रहेगा और कई एक जगहों पर जम्मू में खासकर भारी बारिश होने का जो अंदेशा है, जो पेशन गोई है वो जताई गई है, और कश्मीर घाटी के जो विभिन्न इलाके हैं यहाँ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने की चेतावनी दी गई है। और इसमें ये बताया गया है कि आप एहतियात करें, अपने घरों में ही रहें, ज़्यादा ट्रैवल ना करें, और ख़ासकर जो हमारे अमरनाथ यात्री हैं उन्हें ये मशवरा दिया जाता है, उनसे ये निवेदन किया जाता है कि वो सब्र से काम लें ताकि जैसे ही मौसम ठीक हो जाए उन्हें पवित्र सफ़र के लिए फिर रवाना किया जाए। हम आप तक ऐसे ही ताज़ातरीन अपडेट्स, ताज़ातरीन रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने तो हमारे स्टूडियोज़ के हेल्पलाइन नंबर 9596990954 पर SMS या WhatsApp के ज़रिए अपनी बात हम तक पहुँचाएँ। अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, और आप हमसे ईमेल के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और DTH के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हमारे पास एक दर्शन रिपोर्ट आया है। जी हाँ, दर्शन रिपोर्ट से आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये उन यात्रियों की तफसील है जो रात को पंचतरणी के बेस कैंप में रुके हुए थे और उन्हें आज यात्रा करने की अनुमति दी गई, क्योंकि पंचतरणी से फिर कुछ ही फासला होता है पवित्र गुफा तक। इसकी वजह से इन यात्रियों को आज यात्रा करने की, बल्कि पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन करने की अनुमति दी गई। और सुबह के 10 बजे तक जो ये है, इनका कुल जो आंकड़ा है, उनकी कुल तादाद जो है 4574 बताई जा रही है, जिनमें से 3465 पुरुष, 970 महिलाएं, 41 बच्चे, 28 साधु, 4 साध्वियां और 66 इनके साथ सुरक्षाकर्मी शामिल थे। जी हाँ, ये आंकड़ा उन लोगों का है जो रात को पंचतरणी के बेस कैंप पर, पंचतरणी के कैंप में रुके हुए थे और उन्हें आज सुबह अनुमति दी गई कि वो पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस आंकड़े में अभी और इजाफा होने की उम्मीद अपेक्षा जताई जा रही है और जैसे ही हम तक ताज़ा आंकड़ा पहुंचता है, हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास यही जानकारी आपके लिए है कि पूरी घाटी में जम्मू के साथ साथ बादल छाए हुए हैं, कई एक जगहों पर बारिशें

0: रही हैं। जम्मू सूबे में जो है ज़्यादा बारिशें, ज़्यादा वर्षा होने की अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की जानिब से, और इस हवाले से हम तक जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी हम आपको उनसे अवगत कराते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए आप भक्ति संगीत सुनते रहिए।
1: निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा मृत्युमुखात गतं प्राणं बलादाकृष्य रक्षते। निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को बलपूर्वक निकालकर उसकी रक्षा करते हैं। मार्कंड ऋषि का पुत्र मार्कंडेय अल्पायु था। ऋषियों ने उसको शिव मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र जपने की सम्मति प्रदान की। मार्कंडेय ऋषियों के वचनों में श्रद्धा रखकर शिव मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का यथाविधि जाप करने लगे। समय पर यमराज आए, किंतु मृत्युंजय की शरण में गए हुए को कौन छू सकता है? यमराज लौट गए। मार्कंडेय ने दीर्घायु पाई और मार्कंडेय पुराण की रचना भी की। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधनई। हे मृत्युंजय महादेव, मैं सांसारिक दुविधाओं में फंसा हुआ हूं। रोग और मृत्यु मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र महामंत्र है जिसके यथाविधि पारायण से व्यक्ति पापों से छूटकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। इस लोक में नाना प्रकार के कष्टों से मृत्यु भय से मुक्त होकर संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का सरल उपाय महामृत्युंजय मंत्र ही है।

भक्ति संगीत जारी है और जारी है हमारा ये विशेष प्रसारण जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज 17वां दिन। आज मौसम की खराबी के बाईस श्री अमरनाथ जी यात्रा फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। जैसे ही यात्रा फिर से प्रारंभ होती है हम आपको जो ताज़ा तरीन आंकड़े हमारे पास आएंगे उनसे अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल जो आज पंचतरणी के बेस कैंप पर यात्री रुके हुए थे उन्हें आज सुबह पवित्र गुफा की जानिब जाकर शिवलिंगम के दर्शन करने की अनुमति दी गई, जिनकी कुल संख्या अभी तक 4574 बताई गई है, जिनमें से 3465 पुरुष, 970 महिलाएँ, 41 बच्चे, 28 साधु, 4 साध्वी और 66 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। हमने डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डॉक्टर मुख्तार अहमद से बात की, उन्होंने हमें ये बताया कि मौसम में अभी अगले एक दो दिनों तक किसी भी सुधार की कोई संभावना नहीं है और जम्मू में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि जम्मू ज़िले में ज़्यादा बारिशें होने की पेशनगोई जताई गई है। और हमारा आप सब से यही निवेदन है कि आप सब्र से काम लीजिए और अपने अपने आधार शिविरों में बैठिए क्योंकि आपके आराम के लिए, आपकी सुविधाओं के लिए और आपकी सुख सुविधा के लिए हमने जो इंतज़ाम किए हैं उनका आप आनंद लीजिए। और जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर हमारा चलता है HMT में, वो कमांड सेंटर इस पूरे घटनाक्रम पर एक निगाह बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए से पूरी इस यात्रा पर नज़र गुज़र रखी जा रही है और इस दौरान यात्रियों को मौका मिलता है कि वो बाहर मार्केट्स में जाएं और अपनी पसंद की कुछ चीज़ें खरीदें, चाहे वो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें हों। और हमारा जो ये इन चीज़ों का बिज़नेस करते हैं उन दुकानदारों से, उन स्टॉल वालों से भी निवेदन है कि वो यात्रियों को मुनासिब चीज़ मुनासिब कीमतों पर दें क्योंकि इससे अगर आप कोई गलत चीज़ देंगे तो इससे आपके कारोबार की छवि ख़राब होती है। और जो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस बार बार और समय समय पर आपको दी जाती हैं उनका आप पालन करें क्योंकि उन्हीं की वजह से आप सुरक्षित रहेंगे और वापस अपने अपने घरों को जाएंगे। फिलहाल ये विशेष प्रसारण जारी है, भक्ति संगीत जारी है, आप सुनते रहिए और ये ट्रांसमिशन एंजॉय करते रहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आप विशेष प्रसारण सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज ऑन AIR की आराधना चैनल, DTH और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हम तक दर्शन रिपोर्ट पहुंचा है। जी हाँ, आप चौंकिए मत, ये दर्शन रिपोर्ट उन यात्रियों का है जो रात को पंचतरणी के बेस कैंप में रुके हुए थे और आज तड़के उन्हें पवित्र गुफा की जानिब जाने की अनुमति दी गई और उन्होंने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इनकी कुल संख्या अभी सुबह के 11 बजे तक 5,874 बताई जा रही है, जिनमें 4,315 पुरुष, 1,377 महिलाएं, 51 बच्चे, 30 साधु, 40 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 96 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। जी हाँ, 5,874 ये वो यात्री हैं जो रात को पंचतरणी के बेस कैंप में रुके हुए थे और आज तड़के इन्हें पवित्र गुफा की जानिब जाने की अनुमति दी गई और ये शिवलिंगम के दर्शन करके वापस बालतल की जानिब, बालतल और पहलगाम के जो बेस कैंप है उनकी जानिब वापस इन ये आ रहे हैं। और ये आंकड़ा जैसे बढ़ता है और हमारे पास अगर इससे भी कोई अच्छी जानकारी या कोई भी जानकारी पहुंचती है तो हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और भक्ति संगीत भी सुनते रहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: 일본에!
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करे।

0: वालों के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण। आज यात्रा का 17वां दिन था और आज मौसम की खराबी की वजह से यात्रा जो है फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। जैसे ही यात्रा फिर से चालू होगी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमारे पास जो आखिरी अपडेट आया था उसके मुताबिक जो यात्री कल रात को पंचतरणी के बेस कैंप में रुके हुए थे उन्हें आज सुबह तड़के गुफा की जानिब जाने की अनुमति दी गई और उन्होंने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनकी कुल संख्या आज दिन के 11 बजे तक 5,874 बताई जा रही है, जिनमें से 4,315 पुरुष, 1,377 महिलाएं, 51 बच्चे, 30 साधु, 4 साध्वीज, 1 ट्रांसजेंडर और 96 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। मौसम फिलहाल अबर आलूदा बना हुआ है और जम्मू डिवीज़न में बारिशें लगातार जारी हैं। श्रीनगर में भी आज सुबह कुछ एक वक्फे के लिए बारिशें हुई और जम्मू में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मकसद और मतलब ये है कि जम्मू डिवीज़न में बारिशें हो सकती हैं और जो मौसम है फिलहाल 2-3 दिन के लिए, जो मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मुख्तार अहमद साहब से हमने बात की थी सुबह, उनके मुताबिक भी 2-3 दिन तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना जताई जा रही है। और हमारा सभी यात्रियों से निवेदन है, गुजारिश है कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आप अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिए और किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपके सब्र करने से, आपके धैर्य रखने से ही आपकी यात्रा जो है कामयाब होगी और अपनी जो बेसिक आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उनका भी आप उपयोग करें, अपनी जो सेहत है उसका ख्याल रखें। और ये सारा जो घटनाक्रम घट रहा है उस पर हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो HMT में वाक़ है वो एक गहरी नज़र रखे हुए है और लेफ्टिनेंट गवर्नर बजाते ख़ुद इस पूरे घटनाक्रम का जायज़ा ले रहे हैं। बार बार वो अपने अफसरान के साथ गुफ्तगू में हैं और जो भी आगे होगा हम आप तक ज़रूर अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए ये विशेष प्रसारण जारी है और मेरी सह उद्घोषिका पाजमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में है, ये शाम के 6 बजे तक आपके साथ रहेंगी। फ़िलहाल के लिए अपने उद्घोषक इकबाल कादिर को अभी के लिए अनुमति दीजिए, कल सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz और FM पहलगाम 100.1 MHz। न्यूज़ ऑन एयर के आराधना चैनल DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। मैं आपकी उद्घोषित पजमान फेरोज़ आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी आज शाम के 6 बजे तक।
1: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: विशेष प्रसारण श्रीअमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग श्रोताओं, आपको बता दें कुछ ही पलों में हम आपको आकाशवाणी दिल्ली के लिए चलेंगे जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।
1: लक्ष्मी, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनैतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष

भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुवनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, एआई, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं आपको बता दें, श्रीनगर 18 जुलाई इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जारी खराब मौसम की भविष्यवाणी को देखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा को यात्रियों की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए 19/7/2026 यानी आज से पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से स्थगित किया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री अंशल गर्ग ने कहा, अगले कुछ दिनों तक खराब मौसम की संभावना और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा को आज से पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से स्थगित किया जा रहा है। इसके अनुसार आज 19 जुलाई से बालतल और नुनवन चंदनवारी बेस कैंप से किसी भी यात्री को आगे यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। मौसम और यात्रा मार्ग की स्थिति सुरक्षित पाए जाने के बाद यात्रा दोबारा शुरू करने की संबंधी जानकारी समय पर जारी की जाएगी।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार समाप्त करेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। अपोजिशन ने मीटिंग में एनसीपीआई को मधु किए जाने पर अलामती वॉक आउट किया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से ताउन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मुकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है, मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराकर ख्वातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल नई दिल्ली में सरकार की जानिब से बुलाई गई सभी पार्टियों की मीटिंग जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। जनाब किरण रिजिजू ने मीटिंग से पहले इजहार ख्याल करते हुए सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो मानसून इजलास के कामकाज को खुश उसलूबी से चलाने के लिए ताउन करें।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन दोनों तरफ के अरकान कानून साजी के कामकाज में तामीरी अंदाज से हिस्सा लेंगे। इधर मीटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद अपोजिशन पार्टियों ने शुरू में मीटिंग से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन की पार्टियों ने एहतजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। मोहतरमा महुआ मोइत्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि आज की मीटिंग में शिरकत करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया कोई तस्लीम शुदा पार्लिमानी पार्टी नहीं है। अलबत्ता अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। इनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, सीपीआईएम के लीडर जॉन ब्रिटस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सवेरे पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने और

अचानक सैलाब आने से तीन ख्वातीन समेत कम से कम चार अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने बताया है कि ये सभी अमवात सबसे ज़्यादा मुतासिरा सूरनकोट तहसील में हुई हैं। हुकाम ने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए इमदादी कार्रवाई तेज़ कर दी है। पूंछ के नोनाबादी गांव में एक मकान के गिरने से एक खातून की मौत हो गई। उनके शौहर और 2 साल से लेकर 6 साल तक के 3 बच्चों को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और अचानक सैलाब आने के तनाजुर में राजौरी और पुंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई का जायज़ा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पुरसकून रहें और सरकारी ज़राए से हासिल होने वाली ताज़ा जानकारी पर अमल करें। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक सैलाब आने से लोगों की मौत होने पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद राजौरी कस्बे में अचानक सैलाब आ गया। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के तनाजुर में सैकड़ों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। दरियाओं के किनारों में शगाफ पड़ गए हैं और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर बहने की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियाँ या तो पानी में बह गईं या जेर आब आ गई हैं। सरकारी और प्राइवेट इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की मुआवनत से बचाव और इमदादी टीमों ने मुतासर कुंभों को बचाकर बाहर निकाला है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फ़ोन पर बात की और राजौरी ज़िले में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। जनाब अमित शाह ने मुतासर लोगों की सलामती और तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से उन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज़ के दौरान खत्े में दूर दूर तक बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज़ बौछार पड़ने की पेशगोई की है। दूसरी तरफ कटरा की सब डिविजनल इंतजामिया ने बारिश के मौसम के दौरान तेजी के साथ कार्रवाई करने और बेहतर तालमेल के लिए दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वहां के बाशिंदे कटरा मानसून कंट्रोल रूम से रुजू करके इमरजेंसी सूरत हाल की इत्तला दे सकते हैं या मदद हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर इस तरह है 01991295681। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा हिल्स में ख़राब मौसम के मद्देनज़र श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब भी मुअत्तल है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि नामुवाफिक मौसम के तनाजुर में अकीदतमंदों की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर पर यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा दोबारा शुरू होने के ताल्लुक से सरकारी वसीलों के तवस्सुत से ताज़ा जानकारी हासिल करते रहें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया मोल्दोवा पहुँचेंगे, जहां वो अपने हमनसब मया संधु के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा के पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसो से भी मुलाकात करेंगी। वो भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मोल्दोवा का ये अव्वलीन दौरा है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया मंगल के रोज़ शिमाली मकदूनिया जाएंगे। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में जुमेरात को रोमानिया पहुँचेंगी। आज अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आज़ादी मंगल पांडे का योम पैदाइश मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंगल पांडे ने मादरे वतन की शान और अजमत को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने हेरा फेरी करके बनाई गई दस्तावेजात के मामले पर बढ़ती हुई तशवीश के तनाजुर में सख्त वार्निंग दी है और जांच के लिए OMR शीट्स जमा कराने के बारे में तलबा और वालिदैन के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने बताया है कि जांच के लिए हाल ही में जो OMR शीट्स दाखिल की गई हैं, उनमें से कई फर्जी या AI की मदद से तैयार की गई हैं। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ियों और ओलंपिक में 2 बार तमगे जीतने वाली PV सिंधु ने जापान ओपन टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। वो जापान में बड़ा टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। टोक्यो में खेले गए फाइनल में सिंधु ने आलमी नंबर 3 जापान की अकाने यामागुची को 21-17 और 21-17 से हरा दिया।
आज रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला यूरोप की मजबूत टीम स्पेन से

होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन एक रोज़ा मैच आज लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। अपोजिशन ने मीटिंग में NCPI को मधु के जाने पर अलामती वॉकआउट किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से ताउन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों मोलदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। बैडमिंटन में PV सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: impressive performances throughout the tournament and will now battle for football's biggest prize. Last night, England secured bronze medal after defeating France 6-4 in a thrilling third place match at Miami Stadium. In cricket, the series deciding third ODI between India and England will be played today at Lord's in London. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. The series is level 1-1. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government holds all-party meeting ahead of the monsoon session of Parliament. Opposition stages symbolic walkout of invitation to NCPI to the meeting. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju seeks cooperation of all parties for smooth running of Parliament. Flash floods and landslides hit multiple places in Jammu and Kashmir, claiming several lives and damage to property. Rescue operations in full swing, sent assures of all possible assistance. President Draupadi Murmu embarks on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In badminton, PV Sindhu scripts history, becoming first Indian to win Japan Open, clinches women's singles title defeating Japanese shuttler Akane Yamaguchi. And football fever peaks worldwide as Argentina and Spain gear up for a showdown in FIFA World Cup final tonight. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात चुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा

0: जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त

0: बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा DTH की आराधना सर्विस न्यूज़ ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे तक हमारे पास दर्शन अपडेट आ चुका है। तो हम आपको बता दें कि कुल मिला के जो दर्शन अपडेट है हमारे पास, 7,853 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,586, महिला 2,027, बालक 72, साधु 39, साध्वी 4, ट्रांसजेंडर 2, सुरक्षा कर्मचारी 123। ऐसे जो कुल मिला के संख्या जो बनती है वो है 7,853 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। अभी हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जम्मू भगवती नगर से जावेद मेहराब साहब, हमारे संवाददाता जो है जावेद मेहराब साहब। जी जावेद मेहराब साहब
1: जी, मैं बताऊं आपको कि आज जम्मू शहर में इस वक्त भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं। सुबह से बादल थे, हालांकि जो भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, कल से भविष्यवाणी की गई है कि बारिश होगी, लेकिन आज ही सुबह से सख्त बारिश की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि शहर में अभी बारिश नहीं हुई, लेकिन संभाग का जो नेशनल हाईवे का जो एरिया है जहां से ये यात्रा होकर घाटी पहुंचती है, वहां पर रुक रुक कर बारिश, रामबन और कई और जगहों पर बारिश होती रही और कई जगहों पर रास्ता बंद भी हुआ। तो इस दौरान जम्मू में मौसम विभाग ने हालांकि कल से रेड अलर्ट का भी जारी किया हुआ है, हालांकि सुबह से ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन शदीद बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसीलिए प्रशासन ने आज श्री अमरनाथ जी यात्रा को भगवती नगर निवास स्थान से घाटी की ओर जाने की इजाजत नहीं दी। दोनों मार्गों की तरफ यात्रा को फिलहाल मौसम के बदलते रुख के कारण रोक दिया गया था। ये फैसला जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर ने साझा करते हुए बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वो अपने अपने ट्रांजिट कैंप्स में बने रहें और अगले फैसले तक सब्र के साथ इंतजार करें, क्योंकि मौसम जैसे ही ठीक होगा अगली इंफॉर्मेशन उनके साथ साझा की जाएगी। फिलहाल जो यात्रा है वो फिलहाल बंद है, लेकिन यहाँ पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लगभग अब 17 दिन गुजर चुके हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु जम्मू के पहले आधार शिविर भगवती नगर से होकर बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए रवाना होते रहे हैं। शुरुआती दिनों के उत्साह के बाद भी अब भी लगातार सफर पहाड़ी जो श्रृंखला है उसका चढ़ाई की का जो सफर है, बदलते मौसम, गर्मी, उमस और बढ़ती भीड़ की थकन के बावजूद भी श्रद्धालुओं के चेहरे हर्षोल्लास के साथ और पूरी हिम्मत के और जज्बे के साथ हर चुनौती पर भारी पड़ रहे हैं। और तो

0: की पूरी पूरी संभावना है, और तेज बारिश का जो अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से वो होनी है। तो इस तरफ यहाँ जो मैं बताऊं आपको कि भगवती नगर, आधार शिवर, पुरानी मंडी, तवी रिवर फ्रंट स्थित राम मंदिर, रेलवे स्टेशन और अन्य यात्रा निवासों में पहुंचने वाले श्रद्धालु यहाँ आराम से अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं और एक नए सफर की तैयारी में तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि पहाड़ी शिखराओं का ये सफर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो जाने के लिए अभी काबिल नहीं है, इसीलिए ये फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है तीर्थ यात्रा को। लेकिन तीर्थयात्री बिल्कुल अपने पूरे हर्षोल्लास के साथ और पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ तीर्थ यात्रा के अगले ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। और तीर्थ यात्रा के इस पूरे मार्ग में मैं बताऊं तो प्रशासन, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं, लंगर समितियां, चिकित्सा शिविर, भोजन, पानी, बिजली, विश्राम की बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी और वो अभी भी जारी है। और यहाँ ट्रांजिट कैंप्स में भी ये सभी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। शहर में जगह जगह पर स्थानीय लोगों ने भी लंगर लगाए हैं। तो तीर्थ यात्रा जो है अभी हालांकि यहाँ हॉल्ट है, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ इंतजार भी हो रहा है श्रद्धालुओं का अगले ऐलान के लिए। लेकिन अभी जो है बारिश की चेतावनी है 2 दिन की, तो मुझे नहीं लगता कि 2 दिन तक ये जो यात्रा है फिर से शुरू हो पाएगी। मौसम जैसे ही ठीक होगा उसकी संभावना, प्रशासन ने भी अपने बयान में जो डिविजनल कमिश्नर है उन्होंने बताया है कि मौसम साफ होते ही अगला ऐलान होगा और तीर्थयात्रियों को घाटी की ओर जाने की इजाजत होगी। तो इस दौरान यहाँ श्री अमरनाथ जी यात्रा में कई जगह पर झांकियां भी निकाली गई श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के मुख्य आकर्षण का वो केंद्र भी बनी। और जैसे इन झांकियों में शिव परिवार समेत तरह तरह की झांकियां लोगों का ध्यान खींच रही थी और अमरनाथ यात्रियों को जगह जगह पर भंडारे का आयोजन भी किया गया था। तीर्थयात्री बिल्कुल जयकारे लगाते हुए झांकियों के साथ चल रहे थे जिससे माहौल एकदम बेहतर बना हुआ है शहर में और इंतजार में है श्रद्धालुओं के कब ये मौसम की का जो अलर्ट है ये खत्म होगा और उसके बाद उन्हें इजाजत होगी तीर्थ यात्रा के निकलने की। लेकिन बाकी जो व्यवस्थाएं हैं चाहे वो ट्रैफिक को लेकर है या ट्रांजिट कैंप्स के अंदर जो व्यवस्थाएं रखी गई हैं उन्हें बिल्कुल अपनी जगह पर रखा गया है। वहाँ खाने पीने की, रहने की, बैठने की, आराम करने की, पानी की, बिजली की सारी व्यवस्थाएं लगभग अभी तक बिल्कुल बेहतर अंदाज में चल रही है और तीर्थयात्री जो है वो कहीं अपने रेल के माध्यम से भी और सड़क के माध्यम से भी यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन ट्रांजिट कैंप्स में ही अभी तीर्थयात्री रुके हुए हैं। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका जावेद मेहराब साहब। श्रोताओं हम आपको बता दें ये हमारे संवाददाता भगवती नगर जम्मू से थे जावेद मेहराब साहब।

0: तल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, अपडेट लेके अभी हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पहलगाम से एस तारिक साहब। आइए जानते हैं क्या कुछ अपडेट हैं इनके पास। जी तारिक साहब।
1: जी फरजाना, बहुत शुक्रिया। पहलगाम के अमरेश्वरी पर्वतों और उनके आसपास के क्षेत्र में आज आकाश और आलूदे और बारिश का सिलसिला निरंतर जारी है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से आइंदा कुछ दिनों तक अनुकूल रहने वाले मौसम के परिणामों को देखते हुए अमरनाथ की यात्रा को यात्रियों की सुरक्षा और कुछ तवा के मद्देनजर आज 19 जुलाई से आरजी रूप से जो यात्रा है वो निर्मित रखी गई है, मुअत्तल कर दी गई है। रीजनल कमिश्नर कश्मीर अनुज गर्ग ने बताया कि खराब मौसम के आशंका के कारण आज से पहलगाम और बालतल दोनों यात्रा मार्गों पर यात्रा आरजी रूप से बंद कर दी जाएगी। इसके अंतर्गत आज से बालतल और धनवन चंदी चंदनवारी आदि शिविरों से किसी भी यात्री को पवित्र गुफा के और आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि यात्रा के पुनरारंभ का जो निर्णय यात्रा मार्ग के सुरक्षा, मौसम की संपूर्ण समीक्षा और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए के बाद उचित समय पर किया जाएगा। अलबत्त आज पंचतरणी में रात्रि विश्राम करने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा के और आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है। ये तब भी श्रद्धालु सुरक्षित रूप से बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के अपरनाथ उन्हें आज ही बालतल मार्ग से वापस उनके संतोया स्थलों से की तरफ रवाना किया जाएगा। इन श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 8,000 बताई जा रही है। इधर जम्मू के भगवती नगर जो से भी आज किसी यात्री काफले को बालतल यागाम आदिशोरों के ओर रवाना होने की अनुमति नहीं दी गई। रीजनल कश्मीर जम्मू रमेश कुमार ने बताया कि ये निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ली गई है और एक बेहतरीन मौसम के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी। प्रशासन के अनुसार जैसे ही मौसम में सुधार आएगा और यह यात्रा मार्ग को सुरक्षित करार दिया जाएगा, श्री अमरनाथ जी यात्रा के आवागमन फिर से शुरू दी जाएगी। इस प्रकार से आज धनुनाधार शिविर से भी किसी यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। धनुनाधार शिविर में रुके हजारों यात्रियों के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध रखी गई है। इधर जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान आज तक जो 4.25 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर चुके हैं। तो बात जब मौसम की चली तो फिर मौसम की बात यूँ है कि आज दिन भर आकाश में बादल छाए रहे। इस समय वातावरण में अधिकतम जो तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस है, जबकि आज रात के समय आकाश से अधिक बादलों से ढका रहेगा और देर रात के कहीं कहीं हल्की बरखा भी हो सकती है। और अभी जो पहलगाम में 6.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जी
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। पल पल के अपडेट्स के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। अभी हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं गांदरबल से रहीम रिजवान साहब। आइए जानते हैं क्या कुछ अपडेट्स लेके आए हैं। जी रहीम रिजवान साहब।
1: जी मैं, मौसम खराब होने के कारण अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। इस बीच बालतल मार्ग से किसी भी यात्री को आज दर्शन करने के लिए पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि यात्रियों को प्रशासन के द्वारा बार बार ये सूचना दी जाती है कि वह बालतल बेस कैंप में विश्राम करें एवं प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यात्रा को निलंबित करने का निर्णय प्रशासन को उस समय लेना पड़ा जब मौसम विभाग ने घाटी में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। इस दौरान मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह सवेरे घाटी में वर्षा हुई है, जबकि बालतल के पूरे क्षेत्र में भी भारी वर्षा हुई। वर्षा के दौरान धुमेल कंट्रोल गेट से पवित्र गुफा तक जो ऊंचे पर्वतों के बीच 14 किलोमीटर का कठिन सफर यात्रियों को तय करना पड़ता है, उस यात्रा ट्रैक पर फिसलन पैदा होने की संभावना है। लिहाजा यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने अस्थायी रूप से तीर्थ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस दौरान जो यात्री बीते रोज बालतल पहुंच गए एवं जो शिवलिंगम का दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे, उन यात्रियों को फिलहाल बालतल बेस कैंप में ही विश्राम करना पड़ेगा। यात्रियों की व्यवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बालतल बेस कैंप में जिला प्रशासन गांदरबल ने यात्रियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है, और इसके लिए जो लंगर है वहां पे उन्हें भोजन करने के लिए व्यवस्थाएं रखी गई है। उसके साथ साथ नहाने के लिए गर्म पानी और विश्राम के लिए उम्दा बेडिंग का भी इंतजाम किया गया है। यात्रियों को पवित्र गुफा तक लाने और सुरक्षित वापस लाने के लिए यात्रा रूट के हर पड़ाव पर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं, और व्यवस्थाओं को लेकर यात्री संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इस वर्ष प्रशासन ने यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। और हम अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहते हैं कि 5 बजे के बाद जो भी यात्री ट्रांजिट कम शादीपुरा या ट्रांजिट कम मणिगांव पहुंचते हैं, उन यात्रियों को 5 बजे के बाद आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। लिहाजा इन यात्रियों को रात भर इन्हीं दोनों ट्रांजिट कैंपों में विश्राम करना पड़ता है। इस दौरान इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में जिला प्रशासन गांदरबल ने उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है, जबकि सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। जी मैम,
0: शुक्रिया आपका रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, अपडेट लेके हमारे साथ हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मोहम्मद तस्कीन साहब बानिहल से। आइए सुनते हैं क्या कुछ अपडेट है इनके पास। जी तस्कीन साहब।
1: जी शुक्रिया। जैसा आपको मालूम ही है कि आज 19 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा को दूसरे ऐलान तक, अगले एहकाम तक मौसमी खराबी की वजह से सस्पेंड किया गया है, आरजी तौर मुअत्तल किया गया है जम्मू से, और दोनों मार्गों पर जो पहलगाम और बालतल के रास्ते जाता यात्रा जाती थी। इस दौरान जो आज जबकि जम्मू से आज कोई ट्रैफिक कश्मीर की तरफ नहीं गया यात्रा का ट्रैफिक, तो इस दौरान जो कश्मीर से दर्शन के बाद आज सैकड़ों की तादाद में यात्री जो है वो वापस आ रहे हैं, और उनकी जो काफले कहेंगे कि वो इस रामबन डिस्ट्रिक्ट से होकर जो पहलगाम वाला है वो पहले ही कदरे पहुंच जाता है, तो वो जम्मू में दाखिल हो चुका जिला जम्मू में, जम्मू के नजदीक है, आसपास है जम्मू के, जबकि जो बालतल का काफला जो कदरे दूर से आता है, उसकी मसाफत दूर है, तो वो इस वक्त उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, रामबन डिस्ट्रिक्ट से होकर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। इस दौरान जो हल्की हल्की बारिशें हुई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग का ये रामबन बानिहाल ये क्षेत्र है, तो इसमें इससे हाईवे पर कोई असर नहीं पड़ा, बिल्कुल हल्की जो बूंदाबांदी थी जो सुबह से हो रही है, और अभी भी मौसम खुशगवार बना हुआ है और बादल बिल्कुल आकाश पर छाए हुए हैं। इस दौरान जो हमने आज सुबह भी ये श्रोताओं को बताया था कि जो वेड वेदर की वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया है बालतल और पहलगाम के रास्ते, अब फिलहाल 19 तारीख यानी आज से आइंदा यानी कम से कम 22 तारीख तक, 23 तारीख तक बारिशों की संभावना जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने जाहिर की है, तो इसलिए जो ट्रैफिक कल यहाँ पहुंचा 2 बजे और 3 बजे के बाद, जबकि कट ऑफ टाइमिंग का शेड्यूल यहाँ पर नाफिज होता है जो अथॉरिटीज ने कर रखा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के मद्देनजर रखा हुआ है जो 3 बजे के बाद कोई भी गाड़ी बानिहाल से कश्मीर की तरफ नहीं जाती, इसी तरह 2 बजे के बाद जो चंद्रकूट में यात्रा निवास है उससे आगे कश्मीर की तरफ ट्रैफिक को चलने नहीं दिया जाता, तो इन दोनों जगहों पर करीबन 1500 के करीब यात्री जो है रुके गए हैं, 914 उसमें चंद्रकूट में है, जबकि करीबन 2200 के करीब यहाँ बानिहाल में थे, उनमें टूरिस्ट भी थे और बाकी यात्री थे, तो इसके लिए जो वहाँ पर इंतजाम जो सरकार की तरफ से जो वहाँ पर लंगर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मुख्तलिफ मुल्कों से जो धार्मिक संस्थाएं हैं, दूसरे समाजी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो लंगर वगैरह लगाए हैं, तो वहाँ पर

0: होटल रंगारंग का खाने पीने का और रहने का बाजाबता इंतजाम है और तमाम यात्रियों से ये कहा गया है कि वो कॉपरेट करें। और जब तक जो ये एडवाइजरी है जिसमें ऐसा कहा गया है कि जिसमें ये जो बारिशों की पेशन गोई है ऊपरी इलाकों में मौसमी खराबी की वजह से, तो उस वजह से उनको कहा गया है कि जब तक सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दूसरे अहकाम जारी नहीं होंगे तब तक आपको इस पर मतलब अमल दरामद करना है। इस दौरान जो रात में शदीद बारिशें हुई है उसमें उधमपुर के इलाके में नाशी जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है उधमपुर का जिखैनी इलाका, इस इलाके में जो नेशनल हाईवे का एक जो ट्यूब है यानी दो जो सड़कें होती हैं फोर लेन हाईवे है इस एरिया में उसमें एक सड़क को नुकसान पहुंचाए, कई जगहों पर पत्थरों और पस्सियों के गिर आने की वजह से तहम इन्हें क्लियर किया गया है। उस वजह से जो ट्रैफिक का जो नकलो हरकत है वो कुछ वक्त तक मुतासिर भी रही है लेकिन मजमूई तौर पर अब ट्रैफिक को बहाल किया गया है और दोनों जो फोर लेन के जो सड़कें हैं यानी दोनों ट्यूब्स उनसे ट्रैफिक चल रहा है। इस दौरान जो नाशरी के पास भी एक ट्यूब जो है वो स्लाइड की जद में आई है, ऊपर पहाड़ी से बहुत सारा मलबा गिर आया है जिसकी वजह से नाशरी टनल के पास रामत डिस्ट्रिक्ट में ये जो सड़क का एक सड़क बंद हुई है जबकि दूसरी सड़क से जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जाने वाले ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जा रही है और वहां से ट्रैफिक गुजारा जा ट्रैफिक पर इसका असर नहीं पड़ा, अलबत्ता हाईवे का मतलब मुतासिर हुआ इफेक्ट पड़ा इसका एक एक लेन पर असर रहा। तो फिलहाल जो मजबूत तौर जो ट्रैफिक आ रहा है एक तो कश्मीर से जो श्री अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा के दर्शन के बाद जो ट्रैफिक आ रहा है वो जम्मू की तरफ निकल चुका है और रामबन डिस्ट्रिक्ट से तो यहाँ से निकलकर उधमपुर और जम्मू की तरफ बढ़ रहा है और बाकी जो नॉर्मल ट्रैफिक है हाईवे पर वो अपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। मुसाफिर गाड़ियां जम्मू से कश्मीर की तरफ और कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रही है जबकि ट्रकों को आज कश्मीर से जम्मू की तरफ जाने की इजाजत होगी और इनके लिए अल्टरनेट डे मुकर्रर किया गया है चलने के लिए। जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्कीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। तो श्रोताओं, आपको बता दें, हमारे साथ अपडेट के हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इमरान नायकू साहब, श्रीनगर ट्रांजिट कैंप से। जी इमरान साहब
1: जी, बिल्कुल, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज खराब मौसम की वजह से यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा है, लेकिन वहीं इस वक्त श्रीनगर में जो मौसम की सूरत हाल है वो बिल्कुल खुशगवार है, यानी कि मौसम अच्छा है। इस वक्त धूप खिली हुई है, सुबह काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ पे हो रही थी, तकरीबन एक घंटे तक श्रीनगर शहर में तेज़ बारिश सुबह हुई, हैवी रेनफॉल जिसे कहा जाता है, लेकिन बाद में मौसम में बेहतरी आई और इस वक्त बिल्कुल मौसम खुशगवार है, सुहाना है। इसके अलावा आज सुबह श्रीनगर के इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से 600 से ज़्यादा अमरनाथ जी यात्री जिन्होंने यात्रा मुकम्मल की उन्हें वापस रवाना किया गया जम्मू के श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के जरिए से कॉन्वाई के बीच में, और इस इन ये जो अलग अलग कॉन्वाई थी जिनमें मेल फीमेल और कुछ साधु भी शामिल थे, और ये वो यात्री जिन्होंने अपनी जो यात्रा है वो मुकम्मल की जो रात को यहाँ श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में रुके थे। इसके अलावा कई सारे और अमरनाथ जी यात्री यहाँ श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में मौजूद हैं, जो कि कल अगर मौसम बेहतर रहा तो यात्रा के लिए इन्हें रवाना किया जाएगा। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में, जैसे कि हम पहले दिन से अपडेट कर रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रियों के लिए यहाँ हर तरह की प्रशासन की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर तरह की सुविधाएं रखी गई है, हर तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, और खासकर ये जानते हुए कि कल पहले से ही मौसम विभाग जो है, जो वेदर डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा था कि मौसम खराब रहेगा, और इस सब के बीच में पहले से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से तैयार थी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जहाँ जहाँ ट्रांजिट कैंप है वहाँ अमरनाथ जी यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उन्हें किसी तरह की कोई मुश्किल या प्रॉब्लम ना हो। सो अभी मौसम बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, बेहतर है, लेकिन सुबह जो बारिश हुई उससे भी कोई असर यहाँ इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप पे नहीं पड़ा है, क्योंकि इसमें पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से एक बेहतरीन ड्रेनेज का जो निज़ाम है या सिस्टम है वो कायम किया गया था, जिसकी वजह से पानी जो है वो इसमें दाखिल नहीं हो पाया। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अभी तक जो यात्रा इस साल रही है बड़े ही पीसफुल मैनर में जा रही है, और लाखों लोगों ने अभी तक, 3.5 लाख से ज्यादा अमरनाथ जी यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा का दर्शन किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात यह है कि हर दिन श्रीनगर के इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में हम अमरनाथ जी यात्रियों से बात कर रहे हैं, उनका फीडबैक हासिल कर रहे हैं अरेंजमेंट्स को लेके, बाकी सुविधाओं को लेके, और हर दिन हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्री जो है अरेंजमेंट्स को लेके प्रशासन की काफी तारीफें कर रहे हैं और इनको ग्रेटिट्यूड पेश कर रहे हैं जिस तरीके से अमरनाथ जी यात्रियों के लिए यहाँ पे जो है अरेंजमेंट्स रखे गए, ना सिर्फ श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में बल्कि जहाँ जहाँ पे भी अमरनाथ जी यात्रियों को रोका जाता है, जहाँ ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं, और या पवित्र गुफा की तरफ जाने वाला जो दोनों रास्ते हैं, जो ट्रैक्स हैं, उन ट्रैक्स को किस तरीके से बीआरओ ने अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया है, उसे रिडेवलप किया है, तो उसको लेके भी अमरनाथ जी यात्री एक पॉजिटिव अपना फीडबैक दे रहे हैं, और उनका भी जो है उनकी भी काफी हम देख रहे हैं कि वो प्रसन्न या तारीफें कर रहे हैं। सो एज सच हम देख रहे हैं या एज अपना यात्रा जो अभी तक, जैसे मैंने कहा, 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया है, और ऐसी कोई अभी शिकायत मौसूल हमें नहीं हुई है, किसी की कोई ग्रीवेंस या कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जो कि शायद हम भी आपके साथ शेयर करें, लेकिन सभी यात्रियों का भी कहना है कि सब कुछ उनके लिए जो रखा गया है, जो अरेंजमेंट्स है, जो इंतजामिया के लोग वहां पे काम करें, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है या वॉलंटियर्स है, लोकल्स है, हर एक अपने तरीके से इस यात्रा की बेहतरी के लिए अपना योगदान पेश कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, 3 जुलाई 2026 को यात्रा शुरू हुई और यात्रा कल यानी 18 जुलाई तक यात्रा सुखद और सफलता के साथ जारी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार तकरीबन 4.25 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए। मौसम में बदलाव के कारण प्रशासन ने अस्थायी रूप से यात्रा को स्थगित किया गया है। इसी सिलसिले में हमारे साथी आमिर अशरफ क्या कुछ साझा करना चाहते हैं हमारे साथ, आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष भी पूरी श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी। यात्रा के आज के दिन तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जबकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन बालतल और पहलगाम मार्गों से अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। अब तक यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से चल रही थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, सुरक्षा बलों और सेवा में लगे स्वयं सेवकों के सहयोग से यात्रा का सफर सफलता के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज तड़के कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने अचानक करवट ली। निरंतर वर्षा, घने बादल और भूस्खलन की बदलती आशंका को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की। मौसम की इसी प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा को एहतियातन अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का एकमात्र उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसे आज खराब मौसम और सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन स्थगित कर दिया गया है। ये निर्णय प्रशासन ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी भारी वर्षा और प्रतिकूल मौसम की चेतावनी के पश्चात लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य केवल और केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। श्री अमरनाथ जी यात्रा देश की अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू और कश्मीर पहुंचते हैं। ये यात्रा दो प्रमुख मार्गों बालतल और पहलगाम के माध्यम से संपन्न होती है। दोनों ही मार्ग हिमालयाई क्षेत्र से होकर गुजरते हैं और वाहन मौसम के अचानक बदलने की संभावना सदैव बनी रहती है। इसी कारण प्रशासन निरंतर मौसम की स्थिति पर दृष्टि रखता है और किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए तुरंत निर्णय लेता है। आज प्रभात से ही कश्मीर के अनेक क्षेत्रों में लगातार वर्षा दर्ज की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों तक तेज वर्षा तथा मौसम के और अधिक बिगड़ने की संभावना व्यक्त की है। इसी के मद्देनजर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों तथा अन्य संबंधित एजेंसीज ने बैठक कर स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाएगा। प्रशासन के अनुसार आज बालटल, नुनमन और चंदनवाड़ी आधार शिविरों से किसी भी नए श्रद्धालु को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी प्रकार दुमेल प्रवेश द्वार से भी फिलहाल यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं है। जो श्रद्धालु पहले से ही सुरक्षित स्थानों अथवा शिविरों में विराजमान हैं, उनसे अनुरोध है कि वे वहीं बने रहें। कृपया अपने अपने शिविरों में विराजमान रहें। मौसम खराब है, प्रशासन आपकी सुरक्षा का ध्यान रख रहा है। धैर्य बनाए रखें, भूस्खलन का खतरा हो सकता है, इसी कारण यात्रा को एहतियातन स्थगित किया गया है। प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बल आपकी सुरक्षा के लिए सतत सतर्क हैं। यात्रा से जुड़े अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये स्थगन केवल एक एहतियाती कदम है। इसका अर्थ ये नहीं कि यात्रा को समाप्त कर दिया गया है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा और दोनों मार्ग पूर्णतः सुरक्षित घोषित किए जाएंगे, उसके पश्चात यात्रा को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सभी एजेंसीज का ध्यान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा पर केंद्रित है। मौसम के खराब होने की स्थिति में पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़, पत्थर गिरने और भूमि खिसकने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के स्थान पर पहले ही यात्रा रोकने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि हिमालयी क्षेत्रों में प्रकृति के समक्ष सावधानी ही सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। इसी बीच सुरक्षा बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा अन्य एजेंसीज पूर्णतः सतर्क हैं। सभी यात्रा मार्गों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम्स भी चिकित्सा शिविरों में तैनात हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। श्रोताओं, प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट खबरों से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी इसलिए जारी की है ताकि आप सुरक्षित रहें। यात्रा पुनः कब आरंभ होगी, इसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों के द्वारा ही जारी की जाएगी। आकाशवाणी बालतल के इस विशेष प्रतिवेदन के लिए मैं आमिर अशरफ।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, आपको बता दें आज 3 बजे तक हमारे पास दर्शन अपडेट आ चुका है जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आज जो 3 बजे तक बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं तीर्थ यात्रियों ने, उनकी जो कुल मिला के संख्या जो बनती है वो है 8102, जिसमें पुरुष 5755, महिला 2089, बालक 79, साधु 45, साध्वी 4, ट्रांसजेंडर 3, सुरक्षा कर्मचारी 127। तो कुल मिला के जो संख्या बनती है वो है 8102 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने अपने कैंप्स में ही रहे, धैर्य से काम ले। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर जो है 9596990954 9596690954। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर भी नोट कर लीजिए। जम्मू के लिए टोल फ्री नंबर 1800180718, 1800180718. श्रीनगर 1800180719, 1800180719। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी akashvanibhaltal@gmail.com, akashvanibhaltal@gmail.com।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम। श्रोताओं आपको बता दें हमारे पास 4 बजे तक का दर्शन अपडेट आ चुका है जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। कुल मिला के 8,552 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए, जिसमें पुरुष की संख्या 6,050, महिला 2,222, बालक 89, साधु 45, साध्वी 4, ट्रांसजेंडर 3, सुरक्षा कर्मचारी 139। तो कुल मिला के 8,552 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि वो किसी प्रकार की चिंता ना करें, अपने कैंप्स में ही रहे, धैर्य से काम ले। मौसम की स्थिति को देख के आपकी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित किया है। मौसम की स्थिति बेहतर होते ही यात्रा फिर से शुरू होगी। आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, आए सुनते हैं हमारे साथी आमिर अशरफ क्या कुछ कहना चाहते हैं यात्रा के हवाले से इस रिपोर्ट में।
1: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष भी पूरी श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी। यात्रा के आज के दिन तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जबकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन बालतल और पहलगाम मार्गों से अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। अब तक यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से चल रही थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, सुरक्षा बलों और सेवा में लगे स्वयं सेवकों के सहयोग से यात्रा का सफर सफलता के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज तड़के कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने अचानक करवट ली। निरंतर वर्षा, घने बादल और भूस्खलन की बदलती आशंका को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की। मौसम की इसी प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा को एहतियातन अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का एकमात्र उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसे आज खराब मौसम और सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन स्थगित कर दिया गया है। ये निर्णय प्रशासन ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी भारी वर्षा और प्रतिकूल मौसम की चेतावनी के पश्चात लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य केवल और केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। श्री अमरनाथ जी यात्रा देश की अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू और कश्मीर पहुंचते हैं। ये यात्रा दो प्रमुख मार्गों बालतल और पहलगाम के माध्यम से संपन्न होती है। दोनों ही मार्ग हिमालयाई क्षेत्र से होकर गुजरते हैं और वाहन मौसम के अचानक बदलने की संभावना सदैव बनी रहती है। इसी कारण प्रशासन निरंतर मौसम की स्थिति पर दृष्टि रखता है और किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए तुरंत निर्णय लेता है। आज प्रभात से ही कश्मीर के अनेक क्षेत्रों में लगातार वर्षा दर्ज की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों तक तेज वर्षा तथा मौसम के और अधिक बिगड़ने की संभावना व्यक्त की है। इसी के मद्देनजर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों तथा अन्य संबंधित एजेंसीज ने

बैठक कर स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाएगा। प्रशासन के अनुसार आज बालटल, नुनवन और चंदनवाड़ी आधार शिविरों से किसी भी नए श्रद्धालु को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी प्रकार दुमेल प्रवेश द्वार से भी फिलहाल यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं है। जो श्रद्धालु पहले से ही सुरक्षित स्थानों अथवा शिविरों में विराजमान हैं, उनसे अनुरोध है कि वे वहीं बने रहें। कृपया अपने अपने शिविरों में विराजमान रहें। मौसम खराब है, प्रशासन आपकी सुरक्षा का ध्यान रख रहा है। धैर्य बनाए रखें, भूस्खलन का खतरा हो सकता है, इसी कारण यात्रा को एहतियातन स्थगित किया गया है। प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बल आपकी सुरक्षा के लिए सतत सतर्क हैं। यात्रा से जुड़े अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये स्थगन केवल एक एहतियाती कदम है। इसका अर्थ ये नहीं कि यात्रा को समाप्त कर दिया गया है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा और दोनों मार्ग पूर्णतः सुरक्षित घोषित किए जाएंगे, उसके पश्चात यात्रा को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सभी एजेंसीज का ध्यान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा पर केंद्रित है। मौसम के खराब होने की स्थिति में पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़, पत्थर गिरने और भूमि खिसकने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के स्थान पर पहले ही यात्रा रोकने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि हिमालयी क्षेत्रों में प्रकृति के समक्ष सावधानी ही सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। इसी बीच सुरक्षा बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा अन्य एजेंसीज पूर्णतः सतर्क हैं। सभी यात्रा मार्गों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम्स भी चिकित्सा शिविरों में तैनात हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। श्रोताओं, प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट खबरों से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी इसलिए जारी की है ताकि आप सुरक्षित रहें। यात्रा पुनः कब आरंभ होगी, इसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों के द्वारा ही जारी की जाएगी। आकाशवाणी बालतल के इस विशेष प्रतिवेदन के लिए मैं आमिर अशरफ।

श्रोताओं, आप बालतल में रिकॉर्ड की गई आरती का आनंद ले रहे थे। आपके साथ आज 5 बजे तक का जो दर्शन अपडेट हमारे पास आ चुका है, आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो कुल मिला के जो संख्या है बाबा भोलेनाथ तीर्थ यात्रियों ने जो दर्शन प्राप्त किए हैं वो है 8,791, जिसमें पुरुषों की संख्या है 6,192, महिला 2,297, बालक 97, साधु 50, साध्वी 4, ट्रांसजेंडर 3, सुरक्षा कर्मचारी 148। तो कुल मिला के जो संख्या बनती है 8,791 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे नसीर अहमद, राजकुमार और शौकत अहमद खान। मैं आपकी साथी उद्घोष का पजमान फेरोज। इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में कल प्रातः 7 बजे फिर उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको फिर से एक और बार अपडेट साझा करना चाहूँगी जो कि 5 बजे तक है। कुल मिला के जो संख्या बनती है 8,791, जिसमें पुरुष 6,192, महिला 2,297, बालक 97, साधु 50, साध्वी 4, ट्रांसजेंडर 3, सुरक्षा कर्मचारी 148। कुल मिला के जो संख्या बनती है 8,791 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित रहेंगे कल 7 बजे तक। जब तक के लिए शुभ यात्रा।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

हे जगदम्ब, मैं अपनी सेवा करे करी दी। हे देवी, अपने कोई अधिक धन सामग्री के कहीं अर्पियो नहीं, तो पण मुझ ऊपर आप अनुपम स्नेह धरावो छो। एनु कारण ए छे के संसार मा कुपुत्र पैदा थई शके छे, पण माता क्यारे कुमाता बनती नथी।

काल रात्री देवी भागवतना पांचमा स्कंदमा तेवीसमा अध्यायमा बताव्याप्रमाणे पार्वती देवीना देह शरीरना कोशमाथी निकळेला होवाथी ए अंबिका देवीने कौशिकी एवं नाम आपवामां आव्युं छे। कौशिकी के अंबिका पार्वतीजीना शरीरमांथी निकळी जता पछी पार्वती ए भयंकर श्याम कृष्ण काळा वर्णवाळा थया एथी ते कालिका कहवाया। एमना आ महाभयानक स्वरूपना दर्शनथी दैत्योने अपार भय थयो पण देवोने माटे ए अपार हर्षदायी बन्या। एज देवी ए कालरात्रि बन्या छे एम देवी भागवत कहे छे। त्यां कहूं छे तेम

अर्थात एक आलरात्री श्याम कृष्ण वर्णवाळा कृष जेमा रक्तवाहिनी नसो देखाई रही छे एवा वृद्ध देखाता तो फैलायेल एवा वितत आकृति वाला जंगल जेवु जमनु मस्तक छे के जे अग्नि ज्वालाओ थी लपेटायेलू होय एम लागे छे। अति दीर्घा बहु लांबा अने भयंकर मुख धरावता ए कालरात्रि ए जाने आकाश ने मापवा तैयार न थया होय एवा एमने अमे प्रणाम करीए।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना।